बोलेगा फिर दिया बोलेगा। ब्रह्मा जुषेता, ब्रह्म की सेवा करना चाहिए। पूर्व माने पहले, ब्रह्म कैसा कहते पूर्व है। अभी ब्रह्म पूर्व कैसे है आप इसको बाद में बताएंगे। तत्र योनिम किण्वसे, तत्र माने तस्मिन ब्रह्मणि, उस ब्रह्म में। योनिम माने समाधिम, किण्वसे करना चाहिए। यहाँ योनि का शब्द होता है निष्ठा, आनी बात। तो तत्र ब्रह्मणि योनिम निष्ठाम अथवा समाधिम किण्वसे, समाधि करना। न करने से क्या होगा, समाधि नहीं लगाने से क्या होगा, ब्रह्म को नहीं जाने क्या होगा। तो कहते नहीं ते पूर्तम अक्षिपत, अगर यदि तुम इसको नहीं करोगे तो पूर्तम अक्षिपत। पूर्तम माने पूर्त कर्म, दो प्रकार के कर्म होते हैं ना, इष्ट और पूर्त। इष्ट कर्म और पूर्त कर्म, पूर्त कर्म। तो पूर्त कर्म तुमको बांधेगा, अगर समाधि नहीं लगाया तो क्या होगा, पूर्त कर्म तुमको संसार में बांधेगा। तो देखो यहाँ इस पर ध्यान देना, पूर्व्यम ब्रह्म जुषेत, ब्रह्म पूर्व है, पूर्व माने पहले है, पहले माने सबसे आगे है। आगे का बताऊंगा, सबका कारण है, सबका अधिष्ठान कहो, कारण कहो, आश्रय कहो। तो सबका किसका है, सबका कारण, सब क्या आशीज है, ये है। अभी देखो आप सामने तुम्हारा एक गुलाब का फूल पड़ा हुआ है, गुलाब का फूल देखा, अरे है ना। तो गुलाब के फूल को जो तुमने देखा, गुलाब का फूल पहले से था, तो नहीं था तो देखा कैसे, नहीं, गुलाब का फूल है था तब देखा। तो था का शब्द क्या है, गुलाब का फूल था, ये भूतकाल हो गया, था गुलाब का फूल था, और आपका जो गुलाब का फूल है अभी वर्तमान है, तुमने गुलाब का फूल है ऐसे देख रहे हो। एक गुलाब के फूल को तुम जो देख रहे हो, किससे देख रहे हो, नेत्र से देख रहे हो, आंख से देख रहे हो, गुलाब का फूल देख रहे हो। तो है, हाय कहने से पहले तुम्हारा नेत्र है कि नहीं, बिना नेत्र से तो देखा नहीं। तो फूल से पहले कौन है, नेत्र है, फूल से पहले नेत्र है। अच्छा, नेत्र से पहले कौन है, हाँ, इंद्रिया, नेत्र से पहले मन है, हानी बात। और मन से पहले कौन है, बुद्धि है, बुद्धि से पहले कौन है, अहंकार, अहंकार, अहंकार से पहले कौन है, महातत्व, महातत्व से पहले कौन है, ब्रह्म तत्व से पहले कौन है, आदि बात प्रकृति, हाँ, प्रकृति, प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से पंचतन्मात्रा, पंचतन्मात्रा से गणस्व षोडश, ये क्रम आया। और प्रकृति से पहले कौन है, पहले कौन है, आत्मा है, आनी बात। तो सबसे पहले कौन हुआ, तो सबसे पूर्वम ब्रह्मा, हाँ,
तो ब्रह्मा पूर्वम जुषेता सेवता, सेवा करना, ब्रह्म की सेवा करना चाहिए। तो सेवा का मतलब क्या होता है उसको जानना चाहिए सबसे पहले जो है। तो ब्रह्म को जानने के लिए करना क्या चाहिए, जो ब्रह्म को जानना है सबसे पहले जो ब्रह्म है, आत्मा है, एक साक्षी भाव है, उसको जानना चाहिए। तो कैसे जानोगे, तो जानने का साधन जानना चाहिए ना। जाने बिना कल्याण नहीं होने वाला है, जाने बिना कल्याण नहीं होगा। अब जानने के लिए क्या चाहिए, का इष्टकर्म और पूर्त कर्म, ये यहां बताते। तत्र योनिम कुरियात, तत्र निष्ठाम कुरियात, कस्मिन ब्रह्मणि, उस ब्रह्म में निष्ठा करने चाहिए। निष्ठा माने समाधि लगना चाहिए। कौन से ब्रह्म, अरे अभी बताए ना, सबसे पहले जो ब्रह्म है उस ब्रह्म में निष्ठा करना चाहिए। निष्ठा माने समाधि, समाहित हो जाना चाहिए। और नहीं समाहित होने, वो ब्रह्म में निष्ठा नहीं करने से, ब्रह्म का आश्रय नहीं लेने से, ब्रह्म को न जानने से हानि किया है। तब वो आगे का श्रुति बताती है, नहीं थे पूर्तम अक्षिपत, पूर्त कर्म होता है। इष्ट कर्म पूर्त कर्म दोनों कर्म द्वारा बांधता है। जैसे इष्ट कर्म है ज्योतिष तुमादि है, बड़े बड़े यज्ञ, राजसीय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, अरे बात सोम यज्ञ है, राजा राजसूय न जीता की विधि बनाया। राजा लोगों को राजसूय यज्ञ करना चाहिए। अश्वमेध न जजेता स्वर्ग काम वही ज्योतिषो में न जजेता, ब्राह्मणा बृहस्पति जपे न जजेता, ये सब विधि बनाया, ये सब नियम बनाया। आप राजा है तो कौन सा यज्ञ करेंगे, राजसूय यज्ञ करेंगे, अथवा अश्वमेध यज्ञ, जैसे राम ने अश्वमेध यज्ञ कराया कि नहीं, अश्व को छोड़ा था, पूरा देश घूम करके आया तो फिर से। तो जो राजा राजसूय यज्ञ न जजेता, अश्वमेधे न जजेता, स्वर्ग काम ज्योतिषो में न जजेता, सोमजाग करो, ब्राह्मण और बृहस्पति जाग करो, ये विधि है, ये विधि से बंधा हुआ सब है। ये बड़े बड़े यज्ञ जो करते हैं, बड़े बड़े जो अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े राजा लोग करते हैं, पैसा वाला लोग करते हैं, धनाढ्य लोग कराते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ भी करते हैं, पुत्र काम हो पुत्रेष्टि ना जजीता, जिसको पुत्र चाहिए वो पुत्रेष्टि यज्ञ करावे। तो ये सब कर्म सब बंधन का हेतु है। और इसी प्रकार समझ लेना, ये तो बड़े बड़ों के लिए, अपूर्त कर्म जो करते हैं, पूर्त कर्म आनी बात पूर्ति के लिए जो करते, सामाजिक सेवा के लिए करते, दान करते हैं, यज्ञ दान तप कर्म करते हैं, बावड़ी बनाते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, मंदिर बनाते, सत्संगाल बनाते, गौशाला बनाते हैं, यज्ञशाला बनाते हैं, आनी बात पूर्तवानी अभाव के पूर्ति के लिए जो समाज करते हैं, एक पूर्त कर्म। परंतु इसके पीछे यदि अहम भाव जोड़े तो बंद जाएगा, याद रखना। तुम कितना भी करो, सब कुछ करो, परंतु उसके साथ जो अहम जोड़ गया, मैं और मेरा, तब कर्म जो है ना आपको फल दिए बिना पीछा नहीं छोड़ेगा, फल देगा। तो फल भुग करने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा, बंधन जाएगा। पूर्त कर्म पंच महायज्ञ होते हैं गृहस्थ आश्रम में, पंच पापात प्रमुच्यते है। गृहस्थ आश्रम में पांच पाप होता है, अनिबात ख्याल है कि नहीं,
हाँ पेशानी,

है ना, झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाते हैं ना, वहां भी कीड़े मकोड़े तो मरते ही है। पंच पापा पंचज्ञात पंच पापा प्रमुच्यते है। तो यहां भी पांचों यज्ञों पांचों पापों से मुक्त होने के लिए पांच महायज्ञ करते हैं गृहस्थ में। ब्रह्म यज्ञ, नृयज्ञ, भूत यज्ञ, आनी पास नृयज्ञ, ये यज्ञ किया जाता है। पशु को देना, पितरों को देना, आनी पास मनुष्य का अतिथि सेवा करना, ये सब यज्ञ होते। तो पंचयज्ञात पंच पाप प्रमुच्यते, पांच प्रकार के यज्ञ करोगे, पांच प्रकार के पापों से मुक्त हो जाओगे। अगर नहीं करोगे तो पाप लगेगा, ऐसा शास्त्रकारों का कथन है। अब मानना न मानना सुनने वाला का काम है, सुनने वाला माने चाहे न माने, तो कहेगा कि वो तो शास्त्र में लिखा, हमारे लिए थोड़े लिखा है। तो शास्त्र में जो लिखा संविधान बनाया, शास्त्र एक संविधान है, संविधान यानी बात आश्रमियों के लिए शास्त्र एक संविधान है। और संविधान ने न मानने से क्या होगा, दंड का भागी बनना पड़ेगा। संविधान नहीं मानने से, जैसे समझो यहाँ लाल बत्ती है, हरा बत्ती है, पीला बत्ती है, आए कि नहीं सिग्नल पर। अच्छा ये क्या चीज है, ये संविधान है। लाल बत्ती देखोगे तो कैसा क्या करोगे, हरा बत्ती देखोगे क्या करोगे, पीला देखोगे क्या करोगे। पीला क्या बतलाता आपको, होशियार हो जाओ, तैयारी करो। और हरा बत्ती चल पड़ो, और लाल बत्ती तो ये तो पुलिस रहे सा नहीं रहे, पर आपको करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। क्यों क्यों, वो इधर इधर देखते हो चल दिया तो कोई पुलिस आए नहीं, इधर भी देखा, इधर भी कोई कोई करता है ऐसा, इधर देखा, इधर देखा, चल पड़ा। ठीक है तुम एक एक आध जगह से बच जाओगे, तीसरे जगह में पकड़ जाएगा, एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट होता है कि नहीं ऐसे आदमियों का। तो ठीक इसी प्रकार समझना, संविधान है, सरकारी संविधान है। तो सरकार के संविधान को नहीं मानने से जैसे हमको दंड भोगना पड़ता है, चाहे भलाई पुलिस रहे चाहे नहीं रहे, हाथ उठे चाहे नहीं उठे, हमको मानना चाहिए। ऐसे ईश्वरीय संविधान है शास्त्र, शास्त्र में जो लिख करके गया है वो शास्त्र को लिखा को मानना, और नहीं मानेंगे तो कुछ बोलेगा कोई नहीं, परंतु ईश्वरीय दंड भोगना पड़ेगा, याद रखना दंड भोगना पड़ेगा। जैसे आप आए ना वकील साहब है ना, म्यूनिसिपल या टैक्स नहीं भरे तो भरने पर भी दंड भरना पड़ता है, नोटिस आ जाता है, देखो सरकार कैसे कैसे कर रहा है। तो कहने का मतलब इष्ट कर्म और पूर्त कर्म, ये कर्म क्या करता है, कर्म करने वाला को ये सकाम भाव से करोगे बंधन होगा, और निष्काम भाव से करोगे तो कल के प्रसंग में बताया था अंतकरण की शुद्धि होगी। क्यों, गीता में भी कल बताया था कि नहीं, यज्ञदान तप कर्म न त्यज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञदान तपस्व पावनानी मनीषिणाम, इतान्य भी ते कर्माणि, इन कर्मों को भी ते करो, संगम त्यक्त्वा फलानि च, संगो नाम आसक्ति ही, संग नाम तो कर्म के फल की आसक्ति, कर्म फल को त्याग करके करना चाहिए।

0: आने बात कर्मा फल को छोड़ देना, और कर्मा ये कर्मा मैं कर रहा हूं ये कर्तृत्व अभिमान भी जोड़ना नहीं चाहिए। जहां हमारे कर्तृत्व अभिमान जुड़ गया किसी भी कर्म के प्रति, तो कर्म फल दिए बिना पीछा नहीं छोड़ा। ना भुक्तम क्षियते कर्म, आपने हजारों बार सुने हैं, अनिवार्य कल्प कोटि शतरपि करोड़ों कल्प व्यतीत हो जाए फिर भी कर्म फल दिए बिना पीछा नहीं छोड़ता। और कर्म तो हम जानबूझ करके करो, सांजन से करो, ये यहां बतलाते हैं पूर्तम अक्षिपत्ते नहीं थे। चलिए इसे भाष्य देखिए। सवित्रा प्रसवेन शस्य प्रसवेन इति जावत्। सवित्रा का अर्थ कर दिया, यहां तृतीय अंत है ना, सवित्रा देख लेना। हाँ सवित्रा सवित्री शब्द है, सवित्री हाँ? सवित्री जैसे पितृ शब्द आएगी ना, भ्रातृ शब्द पितृ शब्द स्वश्री शब्द ऐसे सवित्री शब्द है, तो तृतीय अंत में सवित्रा। ये आगे प्रसव है ना, ये विशेषण दिया, प्रसव माने उत्पन्न करने का, प्रसव है ना इति जावत। तो सवित्रा माने सविता, भगवान जो है, भगवान जो सविता है उनके द्वारा प्रसूत। हाँ जो प्रसूत है, प्रसूत माने उत्पन्न किया हुआ है, प्रसूत है ना। जूषित सेवित ब्रह्म पूर्वम चिरंतनम। हाँ तो सविता से अनुज्ञा रह करके क्या करना चाहिए, हाँ ब्रह्म की सेवा करना चाहिए। तो सेवा का मतलब क्या है, चिरंतनम ब्रह्म सेवते जूषेता सेवेता, सेवा करना, सेवा करना, ब्रह्म की सेवा करो माने क्या है तो आगे बतलाया। तस्मिन तत्र तस्मिन ब्रह्मणि निष्ठाम समाधि लक्षणम कुरुस्व कृण्वसे कुरुस्व। तस्मिन ब्रह्मणि उस ब्रह्म में, जो सबसे पहले ब्रह्म है ना, क्या ब्रह्म देवानाम प्रथमा संभवुव विश्वेश्य कर्ता भुवनेश्य गुप्ता स ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा ज्येष्ठ पुत्राय अथर्वाय प्राह अथर्वणय प्रभदेता ब्रह्म काम पूर्ववास ब्रह्म विद्या अंगिरसे। देखो आपने मुंडक उपनिषद पढ़ा होगा, मुंडक उपनिषद में पहले पहले आता है ब्रह्मा देवानाम प्रथमा संभव हुआ, सबसे पहले उत्पन्न कौन हुआ, ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा को उत्पन्न किया कि नहीं, यो यो हवे ब्रह्मण देवानाम प्रथमा संभव हुआ। हाँ यो ब्रह्माणाम विदधाति पूर्वम यो वै वेदान स प्रहीणति तस्मै तम देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर वही शरणमहम प्रबद्धे। ये पढ़ा कि नहीं, कहाँ आया ये, अरे इसी में आएगा, इसी में आएगा, आगे आएगा, समझे ना। हाँ शांति बात तो करते हैं, यानी वह सबसे पहले उत्पन्न कौन हुआ, ब्रह्मा जी, ऐसा कहते हैं ना, ब्रह्मा जो है भगवान के नाभि कमल से पैदा हुए, आए नहीं मैं, वो तो भगवान विष्णु का है, भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा से पैदा हुए। तो ब्रह्मा में और ब्रह्म में अंतर क्या है, एक डंडा है जिसमें, ब्रह्मा में डंडा है तो ब्रह्मा बन गया। तो बहुत से आदमी जो है ना दोनों को एक ही समझते हैं, तो डंडा काट देते गलती से, यहाँ आकार आ गया।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ஓம் சிவாய நம. சைவம் டாட் ஆர்கின் அன்பான நேயர்களே, நீங்கள் கேட்கவிருப்பது சிவகீர்த்தனைகள். பாடல் பாபநாசம் சிவன் இயற்றிய உமையூர் பாகனே. ராகம் நாட்டை. பாடியவர் ஸ்மிருதி ஸ்ரீதர். வணக்கம். ஓம் சிவாய நமன்.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: चंद्रशेखराष्टकम्।

नमः, भोजनाय भोक्त्रे नमः, लोकनेत्रे नमः, दुराधराय नमः, अतीन्द्रियाय नमः, महामायाय नमः, सर्वावासाय नमः, चतुष्पथाय नमः, कालयोगिने नमः, महानादाय नमः, महोत्साहाय नमः, महाबलाय नमः, महाबुद्धये नमः, महावीर्याय नमः, भूतचारिणे नमः, पुरंदराय नमः, निशाचराय नमः, प्रेतचारि महाशक्तये नमः, महाद्युतये नमः, अनिर्देश्य वपुषे नमः, श्रीमते नमः, सर्वहार्यमिताय नमः, गतये नमः, बहुश्रुताय नमः, बहुमयाय नमः, नियतात्मने नमः, भवोद्भवाय नमः, ओजस्तेजोद्युतिकराय नमः, नर्तकाय नमः, सर्वकामकाय नमः, नृत्यप्रियाय नमः, नृत्यनृत्याय नमः, प्रकाशात्मने प्रतापनाय नमः, बुद्धस्पष्टाक्षराय नमः, मन्त्राय नमः, सन्मानाय नमः, सारसंप्लवाय नमः, युगादिकृद्युगावर्ताय नमः, गंभीराय नमः, वृषवाहनाय नमः, इष्टाय नमः, विशिष्टाय नमः, शिष्टेष्टाय नमः, शरभाय नमः, शरभाय धनुषे नमः, अपाम्निधये नमः, अधिष्ठानविजयाय नमः, जयकालविदे नमः, प्रतिष्ठिताय नमः, प्रमाणज्ञाय नमः, हिरण्यकवचाय नमः, हरये नमः, विरोचनाय नमः, सुरगणाय नमः, विद्येशाय विबुधाश्रयाय नमः, बालरूपाय नमः, बलोन्माथिने नमः, विवर्ताय नमः, गहनाय गुरवे नमः, करणाय नमः, कारणाय नमः, कर्त्रे नमः, सर्वबन्धविमोचनाय नमः, विद्वत्तमाय वीतभयाय नमः, विश्वभर्त्रे नमः, निशाकराय नमः, व्यवसायाय नमः, व्यवस्थानाय नमः, स्थानदाय नमः, जगदादिजाय नमः, दुन्दुभाय नमः, ललिताय नमः, विश्वस्मै नमः, भवतात्मात्मनिसंस्थिताय नमः।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

करोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया।

ఆదినః మాయా శక్తి విలాస కల్పితమః వ్యామోహ సంహారిణే తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే. భ్రాంత వృషంవాదినః సంసార మే అనేక మతవాద వాలే హై, మతభేద వాలే హై, అనేక వాద ప్రసిద్ధ హై. చార్వాక్ వాద, దేహాత్మవాదీ లో, ప్రాణాత్మవాదీ లో, ఇంద్రియాత్మవాదీ, చంచల్ మన్ కో హీ ఆత్మా మాన్నే వాలే, మనాత్మవాదీ, బుద్ధ్యాత్మవాదీ ఔర్ శూన్యాత్మవాదీ, యే సబ్ సంసార మే దర్శన్ కే బారే మే, ఆత్మా కే బారే మే భ్రాంత హైన్ ఔర్ ఉసీ కే చల్తే యే కహతే హైన్ కి యహీ మత్ ఠీక్ హై, యహీ సిద్ధాంత ఠీక్ హై, ఇసీ సిద్ధాంత కో మానో తో తుమ్ సుఖీ రహోగే. तो सबसे पहले बताया था देहात्मवादी. इसका खंडन करते हुए सुरेश्वराचार्य जी ने बड़े युक्ति से सबका एक एक का खंडन किया है. देहादीनाम जड़ार्थानाम पाषाणम बदनात्मनाम कथम भवेत अहम भाव సమావేశం వినేసితు. యే జడాదీనాం, ఆదిపద్ సే సభీ కో లే లేనా, జో జడ్ పదార్థ హై, క్యోంకి ఇన్కా ఉపాదాన కారణ హీ జడ్ హై ఔర్ జడ్ ఉపాదాన కారణ కా హీ పరిణామ యే దేహ, ఇంద్రియ, ప్రాణ, మన్, బుద్ధి, ये सब उसी जड़ उपादान कारण का ही कार्य है, परिणाम है. पाषाणवत अनात्मना, पत्थर की तरह है ये सब, मिट्टी की तरह है, पत्थर की तरह है. पाषाणवत अनात्मना, ऐतरीय उपनिषद में ये प्रसंग आया है. परमात्मा ने अपनी इच्छा से, अपनी संकल्प से, मायावृत्ति के द्वारा अनेक प्रकार के जीव शरीर का निर्माण किया. और सारे जीवों का, जीव शरीरों का निर्माण किया और थोड़े दूर खड़े होकर देखा, ये माया या प्रकृति उपादान कारण से मैंने इन शरीरों को बनाया तो सही है, देखूं कैसा है, क्या करते हैं ये. लेकिन बिल्कुल निश्चेष्ट पत्थर की तरह पड़े रह गए ये लोग. कुशल से कुशल कारीगर यदि बढ़िया से बढ़िया मार्बल का पत्थर लेकर बड़ी कुशलता पूर्वक वह मूर्ति बनाता है, लेकिन वह मूर्ति जहां बनाया, जिस रूप में बनाया, वहीं वह मौन पड़ा रहता है, निश्चेष्ट पड़ा रहता है. इसी तरह परमात्मा ने इन तमाम जीवों का शरीर निर्माण किया अलग अलग और देखा, जड़ मूर्ति की तरह पड़ा रहा, निश्चेष्ट पड़ा रहा. तब परमात्मा ने यह संकल्प किया, मेरे प्रवेश के बिना यह कैसे चेष्टा कर पाएगा, क्योंकि चैतन्य तो केवल मैं हूं, मेरे अलावा सभी जड़ हैं
और जब तक मैं इनमें आत्मा रूप में प्रवेश नहीं करूंगा तब तक ये कुछ नहीं कर पाएंगे, जड़ के जड़ बने रहेंगे। वाणी बोल नहीं पाएगी, आंख देख नहीं पाएंगे, कान सुन नहीं पाएंगे, जिह्वा चख नहीं पाएगी, नाक सूंघ नहीं पाएगा, हाथ नहीं चल पाएगा, पांव नहीं चल पाएंगे, शरीर में कोई चेष्टा नहीं होगा, प्राण स्पंदित नहीं हो पाएगा। बहुत विचार किया उसके बाद, इसमें मेरा प्रवेश करना बहुत जरूरी है, तभी यह सार्थक होगा। ऐसा निश्चय करके परमात्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया, ये ऐतरीय उपनिषद का प्रसंग है। और आश्चर्य की बात है कि परमात्मा के चैतन्य का प्रवेश होते ही ये शरीर पूरा का पूरा चेष्टा करने लग गया, इंद्रियां अपने अपने काम करने लग गए, आंख अपना विषय देखने में समर्थ हो गया, कान अपने विषय शब्द सुनने में समर्थ हो गया, वाणी अपने विषय और शब्द बोलने में समर्थ हो गया, नाक अपने विषय गंध सूंघने में समर्थ हो गया, ये सब स्वतंत्र रूप से अपने अपने कर्म करने में सक्षम हो गए। लेकिन ये तभी ये सक्षम हुए जब वो परमात्मा आत्मा के रूप में प्रवेश हुआ। सुरेश्वराचार्य जी ने इन तमाम मतवाद का खंडन करते हुए निषेध कर दिया कि तुम्हारा जो शरीर है, इसको तुम जो आत्मा मान रहे हो, इसकी वास्तविकता क्या है, कैसी है, पता है तुम्हें? ये तो जड़ है, पत्थर की तरह है। यदि शरीर से बिना आत्मा का इसमें प्रवेश न होता तो ये तो जड़ का जड़ पड़ा रहता, जैसे मूर्तिकार की मूर्ति पड़े रहता है। और ये आश्चर्य है कि परमात्मा में और उस मूर्तिकार में इतना ही अंतर है। परमात्मा यदि उस पत्थर की मूर्ति बनाता तो उसमें बनाने की क्षमता भी है और उसमें आत्मा के रूप में प्रवेश करने की भी क्षमता है, और प्रवेश कर जाता, किया ही है देख लो। और मूर्तिकार में यही एक अड़चन है कि वो बना तो सकता है लेकिन उस मूर्ति में वह आत्म रूप में प्रवेश नहीं कर सकता है। परिणाम है कि चाहे कितने ही सुंदर मूर्ति बनाओ वह जड़ का जड़ पड़ा रहता है, उसमें चेतनता नहीं है। चेतनता आपके भावना से उसमें आरोप करना पड़ता है, तब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, फिर भी वह जड़ के जड़ रहते हुए भी पत्थरावच्छिन्न चैतन्य आपकी भावना को सुनने में समर्थ होता है, तभी आपकी प्रार्थना फलीभूत होती है। ये प्राण प्रतिष्ठा की विधि है। सामान्य चैतन्य तो हर पत्थर में है ही है। आप प्रश्न कर सकते हो, जब उन पत्थरों को उन मूर्तियों को जड़ ही मानना है तो जड़ का हमारे साथ क्या संबंध है? फिर हम उनकी प्रतिष्ठा करके हम उसकी अर्चना और पूजा आदि क्यों करें? उसके सामने खड़े होकर प्रार्थना क्यों करते हैं महाराज, यदि वह वास्तव में जड़ है? तो तब विशेष चैतन्य की अभिव्यक्ति न होने पर भी सामान्य चैतन्य उसमें विद्यमान है, और प्राण प्रतिष्ठा के विधि से वह सामान्य चैतन्य सक्रिय होता है, आपकी भावनाओं से संबंधित होता है, तब प्राण प्रतिष्ठित मुन विग्रहों में आपाततः देखने में जड़ होने पर भी तद अवच्छिन्न चैतन्य वेदांत की प्रक्रिया अनुसार वहां सामान्य चैतन्य विद्यमान है, वही सामान्य चैतन्य आपकी भावनाओं से अनुप्राणित होकर, आपकी भावनाओं से अभिप्रेरित होकर आपकी अभिलषित वरदान देने में समर्थ होता है। देहा

0: उस परब्रह्म परमात्मा के इन जड़ात्मक शरीर के अंदर प्रवेश किए बिना ये जड़ात्मा शरीर में अहम भाव भी नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें जो अहमपना है वो भी परमात्मा का ही अनुप्रवेश है। देहस्तावत अयन्नात्मा दृश्यत्वात् जड़वत्वात् तथा सुरेश्वराचार्य जी ने फिर खंडन कर दिया। देहतावत अनात्मा, ये जो पंचभूतात्मक अन्नमय कोश है ये देह, देह शब्द का अर्थ ही होता है विकारी, बढ़ने वाला, अन्न से बढ़ता है, बढ़ने वाला। शरीर शब्द का अर्थ ही होता है घटने वाला। देह शब्द का अर्थ बढ़ने वाला, शरीर शब्द का अर्थ घटने वाला। तो घटने वाला और बढ़ने वाला होने के कारण यह आत्मा नहीं हो सकता है। शरीर आत्मा न होने में दो हेतु दिया है। पहला हेतु दिया दृश्यत्वात्, यदि यह शरीर किसी के द्वारा देखा जाता है तो फिर यह आत्मा नहीं हो सकता है। इसीलिए यदि आप इस भरोसे में हैं कि इन आंखों से मैं भगवान को देख लूं, परमात्मा को देख लूं, समय बर्बाद नहीं कर लेना। चर्म चक्षु से भगवान नहीं दिखते, चर्म चक्षु से परमात्मा नहीं दिखता। इसलिए तो अर्जुन को भगवान के रूप देखने के लिए भी परमात्मा ने अलग दृष्टि दी है। गीता में है कि नहीं ये बात है? दिव्यम ददामि ते चक्षुहु, हे अर्जुन तू इस आंखों से मेरे स्वरूप को नहीं देख पाएगा। मेरे स्वरूप को देखना होगा तो तुझे मैं दूसरा ही चक्षु दूंगा। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमी रूपम ऐश्वरम, तब जाके मेरे ये ऐश्वर्य भाव को देख पाएगा। नहीं तो इन चर्म चक्षुओं से तो तू जैसे अपने को देखता वैसे मुझे भी देख लेगा। सभी लोग यही करते हैं। तो दृश्यत्वात् चर्म चक्षु से जो दिखता है वह दृश्य है, दृश्य जितने भी हैं वह सब अनात्मा है, आत्मा चर्म चक्षु दृश्य नहीं है। गीता के 15वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का स्पष्ट कर दिया है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, चर्म चक्षु के भरोसे पर परमात्मा का दर्शन करने की इच्छा से यदि आप बैठे हो तो समय बर्बाद नहीं कर लेना, इसकी भरोसा नहीं कर लेना। इस चर्म चक्षु से तो तुम्हारा बेटा दिखेगा, पति दिखेगा, पत्नी दिखेगी, मां दिखेगा, बाप दिखेगा, भाई दिखेगा, शत्रु दिखेगा, मित्र दिखेगा, इष्ट दिखेगा, अनिष्ट दिखेगा, परमात्मा नहीं दिखेगा। आज तक दिखाई नहीं किसी को। मां बाप दिखे हैं, भाई बंधु दिखे हैं, बेटा बेटी दिखे हैं, पति पत्नी दिखा है, नौकर मालिक दिखे हैं, गाड़ी पदार्थ घर सब कुछ दिखा है परमात्मा को छोड़कर, बाकी सब दिखा है कि नहीं? सबको दिख रहा है, दिख ही रहा है और दिखेगा ही इसी के माध्यम से, ये दिखेंगे ही इसके माध्यम से, चर्म चक्षु के माध्यम से। दृश्यत्वात् पहला हेतु दिया दृश्य होने के कारण ये शरीर आत्मा नहीं है, और दृश्य होने के कारण ये शरीर आत्मा नहीं है। जो दिखाई नहीं पड़ता है चर्म चक्षु से वो तो आत्मा हो सकता है ना, तो प्राण तो आत्मा हो सकता है, मन तो आत्मा हो सकता है, बुद्धि आत्मा हो सकती है, क्योंकि वह चर्म चक्षु से दिखाई नहीं पड़ते हैं तब वे तो आत्मा हो सकते हैं ना। तो प्राण में, इंद्रियों में, मन में, अंतकरण में अतिव्याप्ति न हो जाए लक्षण, उसको हटाने के लिए कहा जड़त्वतः। दूसरा विशेषण जोड़ दिया क्योंकि जड़ भी है। एक तो दृश्य है, दूसरा जड़ है, इसलिए यह आत्मा हो ही नहीं सकता है देह। रूपादिमत्वात् सांसत्वात् भौतिकत्वात् च कुंभवत्। और तीन हेतु दे दिया। ये पांच हेतु से ये शरीर आत्मा नहीं हो सकता, पांच कारणों से शरीर आत्मा नहीं हो सकता। पहला कारण दृश्य है, इसलिए यह आत्मा नहीं हो सकता। दूसरा कारण ये जड़ है, इसलिए यह आत्मा नहीं हो सकता। तीसरा कारण ये रूपादि मत्वात, ये रूप वाला है, रूपाश्रय है, रूप वाला है, इसलिए कोरा काला, मोटा पतला, दुबला। सांसत्वात तीसरा हेतु दिया, ये सांस है, अंशांशी भाव है, अवयव अवयवी भाव वाला है। ये तो अनेक अवयवों से बनकर मिलकर बना है, ये एक ही नहीं है, ये अवयवों को मिलकर बना हुआ है। चौथा हेतु दिया सांसत्वात, और पांचवा हेतु दिया भौतिकत्वाच। यह पंचीकृत पंचमहाभूतों का सम्मिलित संघात रूप है। ये एक भूत भी इसमें सम्मिलित न हो तो ये का अस्तित्व नहीं रहेगा। भौतिकत्वात् कुंभवत् देह आत्मा न भवती, नाना छिद्र घटोदर स्थित महा। घड़े की तरह है ये, जैसे घड़ा दृश्यत्वात् आत्मा न भवती, घड़ा दिखाई पड़ता है इसीलिए वो आत्मा नहीं होता। कोई भी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी घड़े को मैं हूं ये नहीं कहेगा, क्योंकि दृश्यत्व यह है तो कहेगा, लेकिन मैं हूं नहीं कहेगा वो। जैसे घड़ा जड़ है, जैसे घड़ा रूपादिवान है, कंबग्रियमान, जैसे घड़ा सांसत्व है, अंशांशी भाव वाला है। नैयायिक लोग परमाणु का संघात है ये मानते हैं, या घट कपाल संयोग ही घट है ऐसा मानते हैं, अंशांशी भाव मानते हैं, और भौतिक है। इन पांच हेतु के कारण घड़ा मैं नहीं हो सकता है, इसी तरह जो घड़े में पांच हेतु हैं वही पांच हेतु इस घड़े में है। कौन से घड़े में? देह घट में है, इसलिए यह आत्मा तो हो ही नहीं सकता। यदि यह आत्मा हो सकता है तो घड़ा भी आत्मा हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं घड़े को आत्मा होने में, लेकिन कोई भी नहीं कहता कि घड़ा आत्मा है, मैं हूं। दूसरी बात से खंडन करते हैं सुरेश्वराचार्य जी। मूर्छा सुप्ति मरण स्वेपी देह प्रदृश्यते। मूर्छा में जो व्यक्ति मूर्छित होता है, सुसुप्ति में गहरी निद्रा में गया हुआ अवस्था में, और मरणेषु व्यावहारिक दृष्टि से मृत्यु के अवस्था में देह प्रदर्श्यते, देह तो दिखता रहता है, जैसा अभी दिख रहा वैसे उस समय भी दिखेगा, मूर्छा में भी शरीर जैसा का वैसा ही दिखेगा, सुसुप्ति में भी शरीर वैसा का वैसा ही दिखेगा, मरण पश्चात भी शरीर वैसा का वैसा ही दिखेगा। ये तीनों अवस्था निश्चेष्टा की अवस्था है, इतने जरूर आप अनुमान कर सकते हो कि मूर्छित अवस्था में व्यक्ति का इंद्रियों के साथ संबंध होता नहीं, सुसुप्ति अवस्था में भी व्यक्ति का इंद्रियों के साथ संबंध होता नहीं, शरीर चेष्टा नहीं करता, मरण पश्चात भी शरीर का चेष्टा नहीं है। इसके बावजूद भी आप ये कह सकते हैं कि मरण पश्चात तो श्वासोच्छ्वास नहीं करता, लेकिन मरने से पहले मूर्छा और सुसुप्ति में तो वह श्वासोच्छ्वास होता है, लेकिन श्वासोच्छ्वास होने पर भी मूर्छा वाला व्यक्ति बाहर के किसी पदार्थ को नहीं जानता, गहरी निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति भी बाहर के किसी पदार्थ को नहीं जानता, मरा हुआ मुर्दा भी बाहर के किसी पदार्थ को नहीं जानता। लेकिन प्राण का संचार होता है, इतनी मात्रा से उसको आत्मा नहीं कह देना, इतनी मात्रा से उस शरीर को आत्मा नहीं कह सकते। प्राण का संचार होने मात्र से उसको आत्मा नहीं कहा जा सकता है। तुलसीदास जी ने तो बड़ा बहुत सुंदर युक्ति से कहा है, प्राण संचार मात्र से शरीर आत्मा होता तो जो है लोहार की जो धोंकनी होती है ना, उसमें भी प्राण संचार होता है तो उसको भी मान लो आत्मा। प्राण संचार नहीं होता उसमें है? लोहार की जो धोंकनी हवा करने वाला होता है ना, लो चमड़े की, क्या बोलते हैं उसको है? धम्मण, हाँ धम्मण, धमनी है। तुलसीदास जी ने तो कहा है, प्राण संचरण होने मात्र से ही आत्मा मानते हो तो वो भी तो आत्मा है, लेकिन कभी भी नहीं सुना है कि उसने मैं यहां हूं ऐसा कहता हुआ कभी नहीं सुना है। देहादि व्यतिरिक्त तदात्मा न प्रतीयते।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.आर रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। इन ऑर्डर टू मेक दीज एक्सटेंसिव रिसोर्सेज मोर एक्सेसिबल एंड बेनिफिशियल टू अवर रेडियो लिसनर्स, वी हैव रीऑर्गेनाइज्ड अवर प्रोग्राम शेड्यूल। திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோசஸ் வில் பி பிராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. பிலாசபிக்கல் டிஸ்கோசஸ் அண்ட் பெரிய புராணம் லெக்சர்ஸ் இன் தமிழ் வில் பி பிராட்காஸ்ட் ஆன் சிவதத்துவம். ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் லாங்குவேஜஸ் அதர் தேன் தமிழ் வில் பி பிராட்காஸ்ட் ஆன் சைவலஹரி. ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் தீஸ் சேஞ்சஸ் தேர் வில் பி சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் டு ப்ரோக்ராம் டைமிங்ஸ். வி ட்ரஸ்ட் தட் யூ வில் கைண்ட்லி அக்செப்ட் தீஸ் ஷெட்யூல் சேஞ்சஸ் வித் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் பேஷன்ஸ். We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Kaliya Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. भक्तों, अभी हम एक और दक्षिण भारतीय संत या नायनमार की कहानी सुनेंगे। इनका नाम कलियर है। शिव के मंदिर में दीपक जलाने की सेवा को भक्तिभाव से करने वाले कलिया नायनार का जन्म तिरुवट्रियूर में कोल्हू चलाकर तेल निकालने वाले तेलियों के एक परिवार में हुआ था। यहाँ शिव का नाम त्यागेश्वर है, वे त्याग की मूर्ति माने जाते हैं। यह वही स्थल है जहां वचन भंग करने के कारण नवी शती में सुंदरर की नेत्र ज्योति छिन गई थी। इसी स्थल पर पिछली शताब्दी में तमिलनाडु के चिंतक संत रामलिंग स्वामी ने 12 वर्ष तक निरंतर साधना की थी। कुलिया नायनार के पास अपार धन संपदा थी, व्यापार में आय भी प्रचुर मात्रा में होती थी। इन्होंने शिव मंदिर के अंदर और बाहर दीप प्रज्वलित करने की सेवा का प्रण ले लिया। निष्ठापूर्वक उनकी सेवा पर्याप्त समय तक चलती रही। कालांतर में इनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आने लगा, व्यापार कम हो गया। इस पर कलिया नायनार अन्य व्यापारियों से क्रय ले करके तेल का विक्रय करने लगे। उससे मिलने वाली धनराशि का तेल खरीद कर दीप सेवा का कार्य चलाता रहा। परंतु शिव तो अपने भक्त के महत्व को सारे संसार को दिखाना चाहते थे। जब तेल विक्रय का काम भी न चला तो कोल्हू चलाने के काम को धन अर्जित करने के लिए अपनाया। कोल्हू में तेल निकालना, बीजों से निकले तेल की जांच करना, बैलों की सेवा करना उनका काम था। परंतु मजदूर अधिक थे, कोल्हू कम, अतः धीरे धीरे आय का यह मार्ग भी बंद हो गया। इतने पर भी जो कुछ मिला उससे वे शिव मंदिर के दीपक जलाने की अपनी सेवा करते रहे। जब आय के सभी साधन बंद हो गए तो उन्होंने अपनी सर्वगुण संपन्न पत्नी को बेचने का प्रयास किया, पर उसमें असफल रहे। सेवा में विघ्न न पड़ जाए यह विचार कर वे दीपकों में वर्तिका डालकर अपने रक्त को तेल के स्थान पर डालने का विचार कर अपना गला काटने को उद्युत हो गए। परंतु त्रिनेत्र त्रिभुवशारी प्रभु स्वयं उसी क्षण प्रकट हुए और अनंत कृपा करते हुए भक्त का हाथ रोक लिया। जब वृषभ आरूढ़ शिव समक्ष आए तो कलियर का घाव स्वतः ही ठीक हो गया। हाथ प्रभु को प्रणाम करने की मुद्रा में बंद गए। शिव ने आस्था के दृढ़ अपने भक्त को शिवलोक में स्थान प्रदान किया। त्रिवट्रियूर के वर्णन में चकिलर ने वहां के मणिमंडपों और सुंदर रंगमंच का वर्णन किया है, जहां शिव के स्तुति गीत गाए जाते थे और नर्तकियों अनेक उनके अनुरूप नृत्य करती थी। संगीत मंडप और प्रवचन मंडप भी मंदिर में थे। इसकी जानकारी पुराणकार ने शिलालेखों की से ग्रहण की है। कलियर नायनार असंख्य अगणित दीप प्रतिदिन जलाते थे और इसे वे दैनिक सेवा के रूप में करते थे। साधारण सेवा में परीक्षा की घड़ी संभवत न आती, पर जब यही दीप सेवा जीवन का लक्ष्य बन गया तो कलियर ने जीवन में भी अड़चन और परीक्षा का समय आया। तमिल प्रदेश में किसी भी कर्म को उच्च या निम्न नहीं माना जाता था। इसका प्रमाण है कि एक धनाढ्य व्यापारी द्वारा कठिन समय आने पर दूसरों के लिए कार्य करना या फिर कोल्हू चलाने जैसी साधारण मजदूरी का कार्य करना भी ठीक ही था। ऐसा कोई उल्लेख या संकेत नहीं मिलता कि किसी भी व्यक्ति ने उनका उपहास किया हो। चिकिलर ने अति प्राचीन काल की इस कथा के माध्यम से अनन्य निष्ठा और अपने प्रण की रक्षा के लिए प्राण तक उत्सर्ग करने की तत्परता का वर्णन किया है। इसीलिए कलियर नायनार एक उच्च कोटि के संत या नायनमार हैं। ओम नमः शिवाय।
4: ओम नमः शिवाय। You're listening to Shaivam

0: You are about to listen Shivananda Lahari, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: आप तैयार हो अपने शरीर को 100% कुर्सी की तरह जड़ है मानने को तैयार है, जबकि आपका शरीर 100% कुर्सी की तरह ही जड़ है। चैतन्य के साथ तादात्म्य होने के कारण आप अपने आप को अपने शरीर को जड़ नहीं मान सकते, लेकिन कोई विचार करने वाला व्यक्ति, तत्व विचार करने वाला व्यक्ति, विवेक करने वाला व्यक्ति जड़ और चैतन्य क्या है, क्या जड़ है क्या चैतन्य है, ये विचार करने वाला व्यक्ति शरीर को कुर्सी की तरह 100% जड़ स्वीकार करेगा कि नहीं, बोलो। अब भी करते हो विचार करने के समय में, तो अब भी यही कहोगे चैतन्य मैं हूं और शरीर मेरा, तो शरीर तो जड़ है। ऐसे भ्रांति क्यों हुई भाई, तादात्म्य के चलते। कुर्सी के साथ आपका तादात्म्यता नहीं है, चैतन्य के तादात्म्यता नहीं है, इसीलिए कुर्सी को तो तुम 100% जड़ मानने को तैयार हो, लेकिन शरीर के साथ चैतन्य का ऐसा तादात्म्य बन गया है, अन्यस्मि अन्य धर्मा धर्मी तादात्म्य हो गया है। चैतन्य का धर्म शरीर में और शरीर का धर्म चैतन्य में अन्य अन्य आश्रय होने के कारण इस तरह भ्रांति हो सकती है। तो ये तो कोई समझदार व्यक्ति विचार करेगा, तभी उसको दिखेगा कि जड़ता कितनी है और चेतनता कितनी है। पशुता भी है, हालांकि आप अपने आप को पशु मानने को तैयार नहीं हो, बोलो। आप लोग अपने आप को पशु मानने को तैयार हो, पशु मानने को तैयार हो, बोलो। पशु मानते हो कि इंसान मानते हो, है? लेकिन जब विचार करते हैं तुम अपने को भले इंसान मान लो, लेकिन जब तत्व विचार करते हैं तो तुम्हारे में इंसानियता कितनी है और पशुता कितनी है स्पष्ट दिखेगा। अब शैव दर्शन में तो कहा गया है, पाशवद्दो ही पशव, पाश से बंधे हुए होने के कारण जीव मात्र पशु है। पाश पंचविधा, आप पांच प्रकार के पाशों से बंधे हैं, और गीता में तो कह दिया है कर्मानुबंधी में मनुष्य लोग। इस संसार में हर मनुष्य उसके द्वारा किए गए कर्म से बांधा हुआ है, तो जो बांधा हुआ हो वो इंसान कैसे हो सकता है, बोलो। इंसान बांधा हुआ होता है, स्वतंत्र को इंसान कहेंगे, बंधे हुए को इंसान कहेंगे, बंधे हुए तो पशु कहेंगे। इसीलिए तुमने भगवान को पशुपति माना कि नहीं, है? भगवान को पशुपति माना कि नहीं? वह पशुपति है तो पशु कौन है, बोलो। तुम खुद पशु हो कि नहीं, उसको तुमने पशुपति माना है तो तुम खुद पशु हो। तो विचार करने पर सिद्ध होता है कि मुझ में पशुता है, लेकिन विचार नहीं करें तो फिर हम पशु सिद्ध नहीं होते, हम तो अपने आप को इंसान बंधे हुए हैं फिर भी इंसान कहते जा रहे हैं। बंधे हुए हैं फिर भी क्या कह रहे, कहने के लिए अपने आप को इंसान कह रहे हैं और बंधे हुए हैं, इसलिए विचार करने पर अपने आप में पशुता सिद्ध हुआ कि नहीं, बोलो। जड़ता पशुता कलंकिता, कलंकी

0: माने जो शास्त्र ने करने से निषेध किया हुआ काम है वह तुम यदि करते हो तो निषिद्ध कर्म करने वालों को कलंकी बोलते हैं। समझ गया कि नहीं? शास्त्र ने कहा कि चोरी न करो, तुमने चोरी किया तो वो तुम्हारे मथे में कलंक लग गया कि नहीं है? शास्त्र ने कहा कि तुम अभक्षण भक्षण ना करो और तुमने कर ली तो कलंक लगा कि नहीं? शास्त्र ने कहा कि ये कर्म ना करो फिर भी तुमने कर ली तो यही तो तुम्हारी कलंकता है। और वास्तव में विचार करें तो तुमने इतने गलत काम कर रखी है, तुम निर्दोष कैसे सिद्ध होगे? इतने गलत काम कर रखी है कि तुम निर्दोष तो सिद्ध नहीं हो सकते हो, इसीलिए कलंकिता कुटिलचारत्वम करते कुछ हो, कहते कुछ हो, मन में कुछ और है, यही कुटिलता है। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मन्यन्यत, इसी का नाम है कुटिलता। मन में कुछ और है, वाणी से कुछ और बोल रहे हो और कर्म कुछ और कर रहे हो, इसी को कुटिलता बोलते हैं। यही दुरात्मा का लक्षण है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, मन में जो है वही वाणी में है और मन और वाणी में जो है वही व्यवहार में है, तो उसी को सरल व्यक्ति कहेंगे, उसी को सीधा व्यक्ति कहेंगे। और मन में कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ है, तो उसको क्या कहेंगे? टेढ़ा व्यक्ति कहेंगे कि नहीं? वो व्यक्ति बड़ा टेढ़ा है, करता कुछ है, बोलता कुछ और है। व्यवहार में भी तो ये कहते हैं ना, उस टेढ़ेपने को ही कुटिलचारत्वम। जड़ता पशुता कलंकिता कुटिलचरत्वं च नास्ति मयि देव, यदि अस्ति राजमौले। राजमौले संबोधन है। राजाओं का भी महाराज सिरमौर राजमौले, राजमुकुट। अस्ति यदि राजमौले, हे राजमौले, ये संबोधन। यदि कदाचित मुझ में जड़ता भी उद हो, पशुता भी हो, कलंकिता भी हो, कुटिलचरता भी हो, तो भी आपके द्वारा तिरस्कार करने योग्य तो नहीं हूं। भवदाभरणस्य नास्मि किं पात्रम्। आपके आभूषण अने आपके दैनंदिनी के उपयोगी वस्तु के रूप में आप मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते? देखो बड़ा सुंदर भाव है यहां। अपने में बहुत से कमजोरियों को बता भी रहे हैं, मुझ में जड़ता है मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि जड़ वस्तु से मैं तादात्म्य कर रहा हूं इसलिए जड़ता है। फिर भी जिस जड़ वस्तु को आपने बड़े प्रेम से स्वीकार किया है, ऐसा जड़ तो मैं नहीं हूं, और ऐसे महान जड़ से जड़ वस्तु को भी आपने स्वीकार किया, तो फिर केवल मेरा तिरस्कार क्यों करते हो? भगवान शिव ने माला किसकी बनाई? गुलाब की, कमल के? प्रार्थना क्या करते हो? सृगपि निर्करोति परिकर। महिमने स्तोत्र में पुष्पदंताचार्य जी ने क्या कहा? सृग माने माला, सृगपि कौन सी माला? सृगपि निर्करोति, मनुष्यों की खोपड़ी, मरने के बाद मशान घाट में पड़ी हुई मनुष्यों की जो खोपड़ी है, उन खोपड़ी समूह को भगवान शिव ने माला पहन बनाकर पहनी कि नहीं? अरे अभी तो मैं जिंदा हूं, मरे हुए खोपड़ी को तो तुमने माला बनाकर पहन रखी है, स्वीकार किया है, धारण किया है, अपने आभूषण के रूप में स्वीकार किया है, तो मेरा तिरस्कार फिर क्यों करते हो महाराज? मान लो कि मैं जड़ हूं, फिर भी तो उस खोपड़ी जैसा जड़ तो नहीं हूं हूं? बोलो, तुम अपने आप को मरे हुए मनुष्यों की खोपड़ी जैसा जड़ मानने को तैयार हो, जबकि वो जड़ खोपड़ी तुम्हारे खोपड़ी में है कि नहीं? फिर भी अपने आप को चेतन मानते हो कि नहीं? तो ऐसे जड़ को शिव स्वीकार कर सकते हैं, तो तुम्हें क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? क्यों तिरस्कार करते हैं? शंकराचार्य जी कहते हैं कि फिर मुझे क्यों तिरस्कार किया? जड़ता। दूसरी बात है, त्रिशूल कैसा है शिव जी के हाथ में? तुम्हारे जैसा चेतना है उसमें? थोड़ा भी चेतनता है? बोलो। ये बात अलग है कि तुम शुद्ध चैतन्य नहीं हो, है ना? भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं ये बात अलग है कि मैं शुद्ध चैतन्य नहीं हूं, मैं जड़ मिश्रित चैतन्य हूं, है ना? लेकिन वो त्रिशूल तो शुद्ध जड़ है, वो खोपड़ी तो शुद्ध जड़ है। अब शुद्ध जड़ त्रिशूल को अपने हाथ का आभूषण बनाकर धारण कर ली, और शुद्ध जड़ खोपड़ी को जब अपने माला बनाकर गंठे में धारण कर ली, मुझमें तो उनकी अपेक्षा बहुत ज्यादा चैतन्य है। मुझे भी अपने शरीर में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कोई न कोई आभूषण के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करते हो महाराज? कहीं पहन लो ना महाराज, मुझे कहीं अपने आभूषणों के कहीं ना कहीं जोड़ लो ना महाराज। आप महिला हो तो नाक में नथनी के रूप में पहन लो, किसे? जब सोने के और हीरा के बिल्कुल जड़ नथनी को नाक में पहन सकते हो, तो उससे तो मैं बहुत ज्यादा चैतन्य हूं महाराज। मुझे कहीं ना कहीं पहन लो, एक कान में लटका लो, हाथ में कहीं अंगूठी बनाकर पहन लो, मैं अपने को कृतार्थ मानूंगा कि शिव ने मुझे स्वीकार किया है। ये परमात्मा कहीं ना कहीं आभूषण के रूप में स्वीकार करो भाई, सर्वथा तिरस्कार तो मत करो। जड़ता पशुता, दूसरी बात है पशु, ये बात अलग है कि मैं बंधन में हूं, मैं बंधा हुआ हूं। आसापास जगद्दास, महाभारत में श्लोक आता है, आसापास जगद्दास। आशा रूपी पास से जो बंधा हुआ होता है वह जगत का दास होकर जीता है, और निराशी वो आशा रूपी पास में जो बंधा नहीं है वो निराशी है, आशा रहित है, अवनीपति, वो सम्राट हो जाता है। जिस दिन तुमने आशा छोड़ दी उस दिन तुम सम्राट हो जाओगे। आशा दास जगद्दास निराशी अवनीपति। और दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में से एक गुरु का वाक्य है ये, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। ये वाक्य किसका है? दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में से एक गुरु का वाक्य है, हैं? तुमको ज्ञान चाहिए तो वेश्या से भी मिल सकता है महाराज, तुम उसके योग्य तो बनो कम से कम। दत्तात्रेय तद योग्य थे, उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर ली। आशा दास जगद्दास निराशी अवनीपति, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। हम सब पशु इसलिए हैं क्योंकि हम आशा के बंधन से बंधे हुए हैं, निराशी नहीं है। लेकिन मैं उस वृषभ जैसा पशु तो नहीं हूं। भगवान शिव का वाहन क्या है? वृषभ है, नंदी है। अरे मैं तो दो टांग वाला इंसान हूं, वो तो चार टांग वाला तिर्यक प्राणी है। मैं तिर्यक तो नहीं हूं, कम से कम नंदी तिर्यक प्राणी है। भगवान शिव ने दो पशुओं को धारण किया है, एक तो वाहन के रूप में नंदी को धारण किया है, अपनाया है, दूसरा मृगधारम, दो उंगलियों के बीच में एक मृग को धारण किया है। मृग चंचल मन का प्रतीक है, प्राणियों में सबसे ज्यादा चंचल प्राणी मृग है, और यह सिंबॉलिक है, मन अति चंचल है, और भगवान शिव ने ये दो उंगलियों के बीच में उस मृग को धारण किया है। दक्षिणामूर्ति भगवान शिव का चार भुजा देख लो, एक हाथ में मृग है, मृग दंतिक त्वकृत सुंदराम मृगधरम, मृगधरम भी आता है ना। अरे भाई वो मृग जैसा पशु तो नहीं ना हूं मैं, नंदी जैसा पशु तो मैं नहीं हूं। ये बात अलग है कि मैं पूर्ण इंसान नहीं हूं, पशुता है, पांच प्रकार के पशुओं से मैं बंधा हूं। अब पशु ही सही, फिर भी जब आप नंदी को वाहन के रूप में स्वीकार कर सकते हो, मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते हो महाराज, मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते हो? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं, शिव हे चंद्रमौले, मुझे वैकल्पिक वाहन के रूप में रिजर्व में स्वीकार करो। शब्दार्थ समझ गए ना, वैकल्पिक वाहन, अल्टरनेट। अरे कदाचित वो नंदी जिस पर आप हमेशा सवारी करते हो कोई दिन बीमार हो गया तो मैं काम में आऊंगा, स्वीकार कर लो महाराज, मेरी सवारी कर लेना है? मुझे उतने लायक तो समझकर स्वीकार करो महाराज, मेरा सर्वथा तिरस्कार मत करो। जड़ता पशुता कलंकिता, तीसरी बात है कलंकी। हालांकि मुझमें वो कलंक नहीं है मेरे दृष्टि से, लेकिन आपके दृष्टि से जब आप देखते हैं कि मैं कलंकी हूं, फिर भी तिरस्कार करने योग्य तो नहीं हूं। चंद्रमा जैसा गुरुपत्नी गामी कलंकी को तो अपने सिर में धारण किया है, मैं ऐसा गुरुपत्नी गामी तो नहीं ना हूं है? बोलो, इतना तो आप गारंटी कहोगे कि नहीं, छाती में हाथ रखकर है कहोगे कि नहीं मैं गुरुपत्नी गामी हूं? आप गुरुपत्नी गामी हैं? बोलो, चंद्रमा गुरुपत्नी गामी है कि नहीं? बोलो, प्रमाण है कि नहीं? और ऐसे कलंकी को जो देवताओं ने भी जिसकी निंदा की, शास्त्र ने निंदा की, और जिसके चलते बृहस्पति ने उसको राजयक्ष्म रोग से ग्रसित कर दिया, क्षय रोग से ग्रसित कर दिया, क्षय रोग राजयक्ष्म टीवी, चंद्रमा को टीवी हो गया है, जा आज के बाद तू क्षय रोग से ग्रसित हो जा। तो परिणाम क्या हुआ है? पूर्णिमा में इतना सुंदर दिखने वाला चंद्रमा प्रतिपदा से घटना शुरू होता है कि नहीं? बोलो, पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से घटना शुरू होता है कि नहीं? अब अमावस्या आते आते तो खत्म, फिर जिस जैसे तैसे वह बेचारा प्राण लेकर अमावस्या के प्रतिपदा से थोड़ा बढ़ने शुरू करता है, पातंजल का च्यवनप्राश खाना शुरू किया होगा, अमृत पकाना शुरू किया होगा, ये स्विच ऑफ करो ना मां। तो जैसे तैसे बढ़ता है तो फिर पूर्णिमा तक तो कुछ तंदुरुस्त होता है, ठीक ठाक होता है, तो फिर रोग लग जाता है, फिर क्षय होने लगता है। क्यों महाराज? उसको तो श्राप लगा है ना। श्राप क्यों दिया? कलंकी। जिसको श्रद्धा से गुरु पत्नी मां की तरह पूजना चाहिए और उसी को उसने पत्नी की तरह भोगने शुरू किया, और ऐसे कलंकी को आपने मस्तक में धारण किया है, तो महाराज ऐसा चंद्रमा जैसा कलंकी तो मैं नहीं हूं। उसको मस्तक में धारण किया है तो मुझे कई चरणों में तो आश्रय दो। बोलो शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? ऐसे कलंकी को आप मस्तक में सिरमौर बनाकर धारण कर सकते हो तो मुझे कहीं चरण की जूती तो बना लो महाराज। जड़ता पशुता कलंकिता कुटिल चरत्वम टेढ़ा चलना, मन में कुछ, वाणी में कुछ, कर्म में कुछ और, व्यवहार में इस प्रकार का भिन्नता लाना, यही जीवन की कुटिल चरता है, टेढ़ा चाल है, यही टेढ़ी चाल है आपकी। इस हिसाब से आप सर्प हैं कि नहीं बोलो हैं? सर्प सीधा चलता है कभी? सर्प हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलता है। सर्प की चाल कुटिल है और आपके जीवन का चाल भी सर्प के सरा है कि नहीं? सर्प की तरह ही है ना। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। पति कहता है कि सत्संग में मत जाना, और तुम सत्संग में गए बिना नहीं रह पाते हो, तो सत्संग में आ गए। पति ने पूछा कहां गई थी? बोले सब्जी लेने गई थी। कुटिल चर हो गया कि नहीं, सर्प हो गया कि नहीं, तुम बोलो, बोलो ना है? ये तुम्हारी कुटिल चरता है कि नहीं, सर्प है कि नहीं? जीवन में कई बार ऐसा होता है भाई, करना ही पड़ता है, और आप लोग कुटिल चर करते ही हो, आप सर्प ही हो। पति से घर खर्चा के लिए पैसा लेते हो और सभी पैसा घर खर्चा में न लगाकर उसमें से कुछ बचाकर साधु ब्राह्मण को देते हो, कुटिल चर है कि नहीं बोलो? ये तुम्हारी सर्पपना है कि नहीं? पति कहा कि इतना, इतने रुपया तुमने पहले लिया था, उसका हिसाब कहां गया? तो तुम कहोगे अरे भाई इतनी महंगी सब्जी है, इतने महंगा तेल है, इतनी महंगे दूध है, ये घर चलाना होता है इतने पैसे से क्या होता है? फिर भी ये कहो कि मैं कैसे घर चला रही हूं, उसमें तुम ये कहोगे दूध महंगा है, सब्जी महंगी है, ये सब कहते हुए साधु संतों को भी देना जरूरी है, कहोगे? बोलो, उस वाक्य को तो तुम छुपाए रखोगे उसको, जबकि देती जरूर हो, तुम कहती नहीं हो ना। यही तो कुटिल चरता है। क्या ये ईमानदारी है, सीधी चरण है तुम्हारा? मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत, यही कुटिल चरता। फिर भी महाराज मैं उस जहर से भरे हुए सर्प की तरह था नहीं। ये बात अलग है कि मेरे में अमृत नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज सर्प जैसा जहर भरा हुआ तो नहीं हूं। ये बात अलग है कि मेरा जीवन सीधा नहीं है, सरल नहीं है, व्यवहार में कई बार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, फिर भी सर्प जैसा तो नहीं हूं। और ऐसे सर्प को भी आपने जब धारण कर लिए है, सिर में जटा बांधने के लिए उसका प्रयोग किया, गले में माला बना के पहन ली, हाथ में बाजूबंद के रूप में रख ली, कमर में दंती त्वक बाघ के चमड़ी को, हाथी के चमड़े को बांधने के लिए बेल्ट के रूप में प्रयोग कर ली, उस सर्प का तो अपने जीवन ही कृतार्थ कर दिया महाराज, लेकिन आज तक मुझे क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो महाराज? कहीं ना कहीं कुछ तो प्रयोग करो मुझे।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: ऋचम् वाचम् प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये शामि प्राणम् प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रम् प्रपद्ये वागो यः शौजो मयि प्राणापानौ जन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातितृणम् बृहस्पतिरमे दधातु शन्नो भवतु भुवनशयस्पतिः शन्नो भवतु भुवनशयस्पतिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामे देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो बृधश्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की, प्रेम पुरी जी महाराज की। आइए, विचार चल रहा है शिव महिमन के दूसरे श्लोक पर, पहले उच्चारण कर लें। अतीत पन्थानम् तव च महिमावाङ् मनसयो अतद्व्यावृत्यायम् चकितमभिधत्त ते श्रुतिरपि शक

0: तीने पतति नमन कश्य नवच।
1: पुष्प दंताचार्य जी भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए यहाँ पर बतला रहे हैं। इस प्रकृत श्लोक में निर्गुण निराकार सगुण साकार दोनों ही स्वरूपों का संक्षेपतः चर्चा किया है। वांग मनसयो तव महिमा अतीतः, इसका तात्पर्य है कि भगवान का जो स्वरूप है महिमा है, मन वाणी से अतीत है। मतलब कि निर्गुण निराकार स्वरूप का प्रतिपादन जब मन वाणी से परे है तो उसका व्याख्यान कैसे हो सकता है, क्योंकि व्याख्यान का साधन हमारे पास मन है और वाणी है। मन वाणी उसी चीज में प्रवृत्त होते हैं जिसमें गुण हो, क्रिया हो या द्रव्य हो, जाति हो, आकृति। सत्यता अवच्छेदक जहां पर होता है वहीं पर शब्द की प्रवृत्ति होती है, और सत्यता अवच्छेदक किसी न किसी गुण, क्रिया, जाति या संबंध से हुआ करती है। पर जो परमात्मा का स्वरूप है वह निर्गुण है, निष्क्रिय है, इस कारण से सत्यता अवच्छेदक की प्रवृत्ति न होने से मन वाणी का विषय नहीं। फिर आखिर इसको कैसे समझें? तो कहते हैं कि भगवती श्रुति डरती डरती कहती है अतद व्यावृत्या यम चकित्म विदत्ते श्रुतिरपि। अतद व्यावृत्ति का तात्पर्य नेति नेति, यह भी नहीं यह भी नहीं। यहाँ जो दो नेति शब्द है उसमें से प्रथम नेति शब्द का अर्थ है व्याकृत प्रपंच का निषेध किया है, और द्वितीय नेति शब्द के द्वारा अव्याकृत। यह पूरा प्रपंच व्याकृत अव्याकृत दो भेदों से भिन्न है। तो निषेधावधिक जो अधिष्ठान है वही परब्रह्म परमात्मा है। इस प्रकार से श्रुति भी चकित होकर के उस स्वरूप का प्रतिपादन करती है, परंतु ये बात अनुभव में नहीं उतर रही कि जो मन वाणी का विषय नहीं है उसको निषेध मुख से शास्त्र प्रतिपादन करता है। परमात्मा को समझने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो विधि मुख या निषेध मुख। मुख का प्राधान्य भी होता है, मुख का दरवाजा भी होता है, दोनों अर्थ होता है। तो आप चाहे विधि मुख से समझे या निषेध मुख से, तो निषेध मुख से श्रुति भयभीत होकर वर्णन करती है। जिस प्रकार से आप हरिद्वार की यात्रा पर निकलते हो और आप अपने पत्नी से कहें जरा अपने संदूक को खाली रखना, हमें भी दो कपड़ा रखना है। पत्नी ने कहा कि संदूक में जगह नहीं, कपड़ा रखना संभव नहीं, पर आप कहते हैं कि जरा कुछ सा अपना सामान करके और दो मेरे कपड़े के लिए जगह बना दो। जब आप आग्रह करते हैं तो पत्नी आपके सामने संदूक खोल करके दो साड़ी को बाहर निकाल दिया और कह दिया कि जगह बन गई। जगह शब्द का अर्थ है आकाश, जो खाली पनाई स्पेस उसी को आकाश कहते हैं, और आकाश की परिभाषा है जो सर्वव्यापक, जो सबको जगह दे उसका नाम है आकाश। तो आकाश जो सर्वव्यापक है उस सर्वव्यापक आकाश के लिए आप कहते हैं कि जगह बना दो, मतलब आकाश बना दो, और दो साड़ी निकाल दिया तो जगह बन गया, आकाश उपलब्ध हो गया। तो जिस प्रकार से आप संदूक से जब कपड़े निकाल देंगे तो केवल आकाश ही आकाश है, आकाश के अंदर ही सारे कपड़े थे, जैसे निकाला वैसे जगह बन गया, वैसे नाम रूपात्मक यह जो आवरण है इसी को ईशावास में कहा गया है कि ईशावास मिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तिन भुंजीथा मां गृध कससित धनम। यहाँ तेन त्यक्तेन का व्याख्याकारों ने अर्थ किया है कि नाम रूप का त्याग करते थे। तो जिस प्रकार से पत्नी ने आपके कपड़े को रखने के लिए दो साड़ी निकाल दिया, जगह बन गई, ऐसे ही उस ब्रह्म में जो नाम रूपात्मक की चादर है, इसको आप निकालेंगे तो चैतन्य चेतन ब्रह्मी ब्रह्म है। ये तो नाम रूप का आवरण होने से हमें सर्वव्यापक परमात्मा की अनुभूति नहीं हो रही है। तो यहाँ पर वह जो व्यापक परमात्मा है उसमें ही नाम रूप परिकल्पित है और उसी की कल्पना से सारा व्यवहार चल रहा है। एक मेवा अद्वितीय आत्मा है। जिस प्रकार से एक कोई कारीगर सूत लेता है, सूत को लेकर के तरह तरह के कपड़े को रूप दे देता है। अब आप उसको सूत नहीं कहते हैं, कहते हैं कि ये साड़ी है, ये कमीज है, ये ब्लाउज है, ये शर्ट है, पैंट है। उसके नाम बदल गए, रूप बदल गए, आकृतियां बदल गई। पर वास्तव में उन कपड़ों से सूत को अलग कर दिया जाए तो कपड़ा की कुछ भी सत्ता नहीं होती। सारे वस्त्र सूत के ऊपर आरोपित है, अनष्ट होने के बाद भी सूत रूप हो जाएंगे। इसी प्रकार से नाम रूपात्मक प्रपंच उस परमात्मा में कल्पित है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचारे तो भी ये बात सिद्ध होती है। जो आप कहते हैं कि मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, इन सारे व्यवहारों में क्रियाएं अलग अलग हैं। चलना क्रिया अलग है, बोलना क्रिया अलग है। क्रियाओं के भिन्नता होने पर भी मैं की अनुगति सभी जगह है। मैं के द्वारा ही चलना हो रहा है। मैं तत्व को क्रिया करने के लिए, चलने के लिए पैर उपाधि है, लेन देन करने के लिए हाथ की उपाधि है। उपाधि मतलब यंत्र समझना अपनी मोटी भाषा में। बोलने के लिए मुख है, सुनने के लिए कान है, सूंघने के लिए नाक है। ये सारी उपाधियां हैं, यंत्र हैं। उसी यंत्रों के द्वारा एक ही मैं तत्व सारा क्रियाकलाप को संपादित कर रहा है। यदि मैं शरीर से अलग हो जाए तो सारे यंत्र बेकार हो जाते हैं। जिस प्रकार से व्यवहारिक जगत में एक ही मैं तत्व के ऊपर ये सारे यंत्र और यंत्रों की आकृतियां और इनके व्यवहार तीनों ही आरोपित हैं। सबके आंख भी अलग अलग है, सबके कान का आकार भी अलग है। किसी की आंख मटर की तरह है तो किसी की कमल की तरह। सबकी आंख एक जैसी नहीं, पर आंख के आकृतियों के अलग होने से दृश्य अलग अलग दिखाई नहीं पड़ता है। चाहे जैसे भी आंख हो, सभी आंखों से रूप दिखाई पड़ता है। और रूप देखने वाला एक साक्षी है, जिसको आप मैं कहते हैं। मैं का शोधित अर्थ है चैतन्य साक्षी, और मैं का अशोधित अर्थ है वाच्यार्थ है साढ़े तीन हाथ का शरीर, जिसको हम देहाध्यास भी कहते हैं। तो जिस प्रकार से एक ही मैं के ऊपर ये तमाम उपाधियां कल्पित हैं, उपाधियों के आकार प्रकार, उससे होने वाले व्यवहार और व्यवहार से फल भी अलग अलग है। जैसे मैं के लिए आंख है, आंख का कार्य देखना, देखने का फल है सुख दुख। यदि आपके अनुकूल रूप है तब तो आप सुखी होंगे, आह्लादित होंगे, बड़ा सुंदर सौंदर्य रूप है। यदि आपके प्रतिकूल है तो आप नफरत करेंगे, उससे दुख होगा। तो जिस प्रकार से एक मैं के लिए सारी उपाधियां हैं, सारे आकार प्रकार हैं और क्रियाएं हैं, इसी प्रकार से उस परब्रह्म परमात्मा के ऊपर ही ये पूरा संसार परिकल्पित है। यदि हम उपाधियों को हटा दें तो केवल मैं तत्व बचता है। और जब तक ये उपाधियां हैं, उपाधियों के क्रियाकलाप हैं, तब तक मनुष्य संसार में दुखी सुखी होता रहता है। जैसे या उपाधियों को हटा करके अपने आप में अपने स्वरूप में आप अंतर्मुख हो जाते हैं तो सारे सुख दुख समाप्त हो जाते हैं। ये आए दिन की अनुभूति है, सत्य जीवन की अनुभूति है। जब हम रात्रि को सोते हैं, सोने के बाद उस समय सारी उपाधियां समाप्त हो जाती हैं। न उपाधियां होती हैं, न उपाधियों का व्यवहार होता है। यहां तक कि उपाधियों का जो सामान्य कारण मन है, वह मन भी अपने कारण अविद्या में विलीन हो जाता है। और ये जो सीमित अहंता है मैं, ये सीमित अहंता भी समष्टि अहंकार में विलीन हो जाता है। इसके विलीन होते ही हम परम आनंद को उपलब्ध होते हैं और इस सबके जीवन की अनुभूति है। आप जगने के बाद कहते हैं सुखम अहम अपस्वाप्सम नाहम किंचित अवेदिशम, मैं सुख पूर्वक सोया कुछ भी नहीं जाना। यह जो अनुभूति है सुखानुभूति, यह आत्म स्वरूप का है, क्योंकि वहां पर कोई भी विषय नहीं है। संसार में जो वैषयिक सुख है इसमें विषय का संबंध है और विषय के संबंध से मालिन्यता आता है, फिर सुख दुख होते हैं। परंतु जो सुषुप्ति जन्य जो सुख है उसमें कोई विषय नहीं, निर्विषयक होने के नाते वहां आप परम आनंद को उपलब्ध होते हैं। जगने के बाद पुनः जैसी मैं की स्फुरणा होती है कि अयम अहमस्मि, सुषुप्ति में मैं विगलित हो जाता है, मैं बिल्कुल विलीन हो जाता है। जो जागृत अवस्था में आप कहते हैं कि अयम अहम अस्मि, अयम मतलब ये 3.5 हाथ का जो शरीर है, मैं ब्राह्मण हूँ, सेठ हूँ, महात्मा हूँ, इस प्रकार का जो परिच्छिन्न अहंकार है, इसके स्फुरित होते ही सारे यंत्र अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आप सुखी दुखी होते हैं, दिन भर काम करते करते रात्रि को आप थक जाते हैं। आपके अंदर ऐसा सामर्थ्य नहीं कि आप बिना सोए 10-20 दिन काम करते रहें। दुनिया कोई भी ऐसा प्राणी समर्थ नहीं है जो बिना सोए ही सारा काम करता रहे। जैसे आप 4-8 घंटा काम करते वैसे ही इंद्रियां थक जाती है, मन भी थक जाता है। और आप सुषुप्ति के लिए दौड़ते हैं, उपनिषद में दृष्टांत दिया है, जैसे आकाश में पक्षी कोई उड़ती है, उड़ने के बाद जब थक जाती है तो थकने के लिए अपने घोंसले की तरफ दौड़ती है। ऐसे ये जीवात्मा जब उपाधियों के द्वारा सांसारिक विषय का सेवन करता है, सेवन करने के बाद जब थक जाता है तो थकने के बाद सो जाता है, सोने के बाद अपने आत्मा के साथ अर्थात सीमित अहंता समष्टि अहंकार के साथ अभिन्न हो जाती है। इसी बात को परिषद में कहते हैं यो वै भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखमस्ति, जो भूमा जो समष्टि अहंता है जिसको ब्रह्मास्मि भी कहते हैं उसी में सुख है। अल्पे का अर्थ होता है जो परिच्छिन्न अहंकार है कि यह मैं हूं, इसमें सुख नहीं है। यदि इसमें सुख होता तो इंसान आए दिन सुषुप्ति की तरफ दौड़ नहीं लगाता। जब आप संसार के सारे विषयों का सेवन करते करते बुरी तरह थक जाते हैं तो मजबूरन सारे विषयों को छोड़ करके सुषुप्ति की तरफ जाना ही पड़ता है। इसलिए यहां पर बतलाया कि वह जो स्वरूप है मन बाणी का विषय नहीं। सुषुप्ति में जाने के बाद वह जो अवस्था है उसका मन बाणी से वर्णन नहीं कर सकते। केवल आप कहते हैं कि मैं सुख पूर्वक सोया कुछ भी नहीं जाना, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अतद व्यावृत्ति के द्वारा ही उस स्वरूप का अधिगत होता है, ज्ञान होता है, जैसे सुषुप्ति में होता है। सकस्य तो तव्यः कतिविध गुणः कस्य विषयः, कहते हैं कि वह जो सगुण साकार है वह सगुण साकार ऐसा है पदे करवाची ने पतति न मनः कस्य न वचः, निर्गुण निराकार के विषय में कह दिया कि वह किसी के का स्तोतव्य नहीं है, स्तुति का विषय नहीं, परंतु सगुण साकार ऐसा स्वरूप है जिसमें सबका मन सबकी बुद्धि अनायास ही लग जाता है। जो सगुण साकार में भगवान ने अनेक प्रकार से अवतार लिया है वह सबके बुद्धि का विषय है। सगुण साकार के विषय में शास्त्र कहता है सर्वम खल्वमिदम ब्रह्मा आत्मय इदम सर्वम, बहुत श्रुतियां हैं, स्वाध्याय में वही प्रसंग चल रहा है। तो जो सगुण साकार परमात्मा है वही परमात्मा नाम रूप का चादर ओढ़ा है। जैसे रंग मंच पर कोई रावण बन गया हो, कोई हनुमान बन गया हो, कोई पुरुष यदि गोपी बन गया, गोपी बनने के बाद उस गोपी बने हुए पुरुष के मन में पति पाने की जैसी अभिलाषा नहीं होती, उसे पता है कि मैं तो पुरुष हूं, लड़का हूं, रंग मंच पर केवल मैं दो तीन घंटे के लिए गोपी भाव को प्राप्त हुआ हूं। इसी प्रकार से वही परमात्मा अनेकाकार भाव को प्राप्त हुआ है। इसी को ऋग्वेद में कहा है एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही उस परमात्मा को अनेक प्रकार से विद्वान लोग कहा करते हैं। वही जो परमात्मा है सत्व गुण को स्वीकार करके विष्णु रूप को प्राप्त हुआ, जगत की रक्षा करता है। वही रजोगुण को स्वीकार करके सृष्टि का विस्तार करता है। वही शिव तत्व तमोगुण को स्वीकार करके संहार करता है। यहां पर शंका होना चाहिए कि सामान्य व्यवस्था है बेस वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम, एक विषैला पेड़ को लगाने के बाद भी स्वयं उसका छेदन करना अच्छा नहीं माना जाता है। तो फिर उस चैतन्य ने जगत को बनाया, संवारा, विस्तार किया, पालन किया, इसके बाद वह संहार क्यों करता है? संहार करना उपयुक्त नहीं है। परंतु हम लोग आए दिन सुनते हैं शास्त्रों के द्वारा वही चैतन्य तमोगुण को स्वीकार करके जगत का संहारक बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? वास्तव में वह जो संहार है वह नए सृष्टि के लिए है। जैसे किसान खेत में फसल लगाता है, फसल जब पक जाती है तो पकने के बाद वह अपने हाथों ही खेत को काट के घर में लाता है। यदि उस पुराने फसल को न काटे तो नया फसल हो नहीं सकता। इसलिए परमात्मा यहाँ पर संहार में हिंसा भाव नहीं बल्कि उसकी उदारता, अनुकंपा, करुणा है। वही चैतन्य माता के शरीर में प्रवेश करके मातृ रूप से पूजित हो रहा है। वही चैतन्य पत्नी के शरीर में प्रवेश करके वह जो है साक्षात सती रूप से पूजित हो रहा है। वही चैतन्य पति के शरीर में प्रवेश करके पति परमेश्वर हो गया। इसलिए हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में चैतन्य की व्यापकता स्वीकार की है, अनेकता भी स्वीकार किया है। जैसे शरीर में अनेकता होने पर भी एकता है, देश में एकता, अनेकता होने पर भी एकता रहती है। इस शरीर में अनेकता का तात्पर्य है सारी इंद्रियां अलग अलग, इंद्रियों का आकार प्रकार अलग, सारे इंद्रियों के कार्यकलाप अलग, फिर भी इसको हम एक शरीर कहते हैं। आंख से देखना बिल्कुल पैर से चलने के विपरीत है, कान से सुनना मुख के खाने से विपरीत है, फिर भी वैपरीत होने पर भी, अनेकात्मता होने पर भी इस पूरे समुदाय को मिलाकर एक शरीर है, ऐसा व्यपदेश कथन होता है। इसी प्रकार से वही चैतन्य अनेक भाव में स्थिर है। यदि पत्नी पति में परमेश्वर का दर्शन करती है तो उसे साक्षात परमेश्वर की दर्शन का फल प्राप्त होता है। सच्चे दिल से दर्शन करे तो, क्योंकि निर्गुण निराकार जो मन वाणी का विषय है उसको वह समझ नहीं सकती है। इसीलिए शास्त्र ने कृपा करके यह कथन कर दिया कि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, जब सब कुछ ब्रह्म है तो सब कुछ के अंतर्गत वह पति का पिंड आ गया। उस पति के पिंड में परमेश्वर का दर्शन करने से जो परमेश्वर के दर्शन से लाभ होता है वह लाभ उसको उपलब्ध हो जाता है। एक पतिव्रता स्त्री जो परमेश्वर समझ कर पति की पूजा करती है वह यदि कुछ भी कह दे वह अमिट होता है। महाभारत में एक छोटी सी कहानी आती है कि एक बार ऋषि किसी सदगृहस्थ घर पधारे हुए थे। कुछ जो है भेंट पूजा में अव्यवस्था हो गई। अव्यवस्था होने के बाद एक ऋषि को बड़ा क्रोध आया। क्रोध आने के बाद ऋषि ने हाथ में जल उठाया, श्राप दे डाला कि तूने हमें निमंत्रित करके हमारा सत्कार नहीं किया। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत प्रार्थना किया कि भीड़ भाड़ में हमें आपका ध्यान नहीं रहा इसलिए मैं आपकी सेवा न कर सकी, क्षमा करे। और ऋषि ने श्राप दे डाला, जा तेरा पति सूर्योदय होते ही मर जाएगा। पतिव्रता ने कहा कि ऋषिवर आपने श्राप तो दे दिया परंतु हमारे पति नहीं मरेंगे। ऋषि ने कहा कि हमारा श्राप अमोघ है। उस पतिव्रता स्त्री ने कहा कि सूर्य उदय होगा तब तो मरेंगे, सूर्य उदय ही नहीं होंगे। उस पतिव्रता स्त्री के पातित व्रत के प्रभाव से सूर्योदय होना बंद, संसार में हाहाकार मच गया, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार। सभी ऋषि महर्षि आए, पत्नी को बहुत समझाए तू मान जाओ। पत्नी ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए सूर्योदय तो होना नहीं है। ऋषियों ने भी मध्यम मार्ग निकाला कि ऐसा है कि ऋषि की बात भी रह जाए और तुम्हारी बात भी रह जाए, इसलिए सूर्योदय होते तुम्हारे पति तो मरेंगे परंतु कुछ क्षण के बाद जीवित हो जाएंगे।
2: ओम नमः शिवाय।
3: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय।

सनातनाय नमः, महर्षये कपिलाचार्याय नमः, विश्वदीप्तये नमः, त्रिलोचनाय नमः, पिनाकपाणिभूर्देवाय नमः, स्वस्तिदाय नमः, सदा स्वस्तिकृते नमः, त्रिधाम्ने नमः, सौभगाय नमः, सर्वसर्वज्ञाय नमः, सर्वगोचराय नमः, ब्रह्मदृग् विश्वसृक्

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

नमइदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुस्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तथार्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धि तत्पुनरस्तदा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में पांचवें श्लोक की व्याख्या चल रही है। देहं प्राणमपि इन्द्रियाण्यपि चलां

उस परब्रह्म परमात्मा के इन जड़ात्मक शरीर के अंदर प्रवेश किए बिना ये जड़ात्मा शरीर में अहम भाव भी नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें जो अहमपना है वो भी परमात्मा का ही अनुप्रवेश है। देहस्तावत अयन्नात्मा दृश्यत्वात् जड़वत्वात् तथा सुरेश्वराचार्य जी ने फिर खंडन कर दिया। देहतावत अनात्मा, ये जो पंचभूतात्मक अन्नमय कोश है ये देह, देह शब्द का अर्थ ही होता है विकारी, बढ़ने वाला, अन्न से बढ़ता है, बढ़ने वाला। शरीर शब्द का अर्थ ही होता है घटने वाला। देह शब्द का अर्थ बढ़ने वाला, शरीर शब्द का अर्थ घटने वाला। तो घटने वाला और बढ़ने वाला होने के कारण यह आत्मा नहीं हो सकता है। शरीर आत्मा न होने में दो हेतु दिया है। पहला हेतु दिया दृश्यत्वात्, यदि यह शरीर किसी के द्वारा देखा जाता है तो फिर यह आत्मा नहीं हो सकता है। इसीलिए यदि आप इस भरोसे में हैं कि इन आंखों से मैं भगवान को देख लूं, परमात्मा को देख लूं, समय बर्बाद नहीं कर लेना। चर्म चक्षु से भगवान नहीं दिखते, चर्म चक्षु से परमात्मा नहीं दिखता। इसलिए तो अर्जुन को भगवान के रूप देखने के लिए भी परमात्मा ने अलग दृष्टि दी है। गीता में है कि नहीं ये बात है? दिव्यम ददामि ते चक्षुहु, हे अर्जुन तू इस आंखों से मेरे स्वरूप को नहीं देख पाएगा। मेरे स्वरूप को देखना होगा तो तुझे मैं दूसरा ही चक्षु दूंगा। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमी रूपम ऐश्वरम, तब जाके मेरे ये ऐश्वर्य भाव को देख पाएगा। नहीं तो इन चर्म चक्षुओं से तो तू जैसे अपने को देखता वैसे मुझे भी देख लेगा। सभी लोग यही करते हैं। तो दृश्यत्वात् चर्म चक्षु से जो दिखता है वह दृश्य है, दृश्य जितने भी हैं वह सब अनात्मा है, आत्मा चर्म चक्षु दृश्य नहीं है। गीता के 15वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का स्पष्ट कर दिया है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ये चर्म चक्षु के भरोसे पर परमात्मा का दर्शन करने की इच्छा से यदि आप बैठे हो तो समय बर्बाद नहीं कर लेना, इसकी भरोसा नहीं कर लेना। इस चर्म चक्षु से तो तुम्हारा बेटा दिखेगा, पति दिखेगा, पत्नी दिखेगी, मां दिखेगा, बाप दिखेगा, भाई दिखेगा, शत्रु दिखेगा, मित्र दिखेगा, इष्ट दिखेगा, अनिष्ट दिखेगा, परमात्मा नहीं दिखेगा। आज तक दिखाई नहीं किसी को। मां बाप दिखे हैं, भाई बंधु दिखे हैं, बेटा बेटी दिखे हैं, पति पत्नी दिखा है, नौकर मालिक दिखे हैं, गाड़ी पदार्थ घर सब कुछ दिखा है परमात्मा को छोड़कर, बाकी सब दिखा है कि नहीं? सबको दिख रहा है, दिख ही रहा है और दिखेगा ही इसी के माध्यम से। ये दिखेंगे ही इसके माध्यम से, चर्म चक्षु के माध्यम से। दृश्यत्वात् पहला हेतु दिया दृश्य होने के कारण यह शरीर आत्मा नहीं है, और दृश्य होने के कारण यह शरीर आत्मा नहीं है। जो दिखाई नहीं पड़ता है चर्म चक्षु से वो तो आत्मा हो सकता है ना, तो प्राण तो आत्मा हो सकता है, मन तो आत्मा हो सकता है, बुद्धि आत्मा हो सकती है, क्योंकि वह चर्म चक्षु से दिखाई नहीं पड़ते हैं तब वे तो आत्मा हो सकते हैं ना। तो प्राण में, इंद्रियों में, मन में, अंतकरण में अतिव्याप्ति न हो जाए लक्षण, उसको हटाने के लिए कहा जड़त्वतः। दूसरा विशेषण जोड़ दिया क्योंकि जड़ भी है। एक तो दृश्य है, दूसरा जड़ है, इसलिए यह आत्मा हो ही नहीं सकता है देह।
रूपादिमत्वात् सांसत्वात् भौतिकत्वात् च कुंभवत्। और तीन हेतु दे दिया। ये पांच हेतु से ये शरीर आत्मा नहीं हो सकता, पांच कारणों से शरीर आत्मा नहीं हो सकता। पहला कारण दृश्य है, इसलिए यह आत्मा नहीं हो सकता। दूसरा कारण ये जड़ है, इसलिए यह आत्मा नहीं हो सकता। तीसरा कारण ये रूपादि मत्वात, ये रूप वाला है, रूपाश्रय है, रूप वाला है, इसलिए गोरा काला मोटा पतला दुबला। सांसत्वात तीसरा हेतु दिया, ये सांस है, अंशांशी भाव है, अवयव अवयवी भाव वाला है। ये तो अनेक अवयवों से बनकर मिलकर बना है, ये एक ही नहीं है, ये अवयवों को मिलकर बना हुआ है। चौथा हेतु दिया सांसत्वात, और पांचवां हेतु दिया भौतिकत्वाच। यह पंचीकृत पंचमहाभूतों का सम्मिलित संघात रूप है। ये एक भूत भी इसमें सम्मिलित न हो तो ये का अस्तित्व नहीं रहेगा। भौतिकत्वात् कुंभवत् देह आत्मा न भवती, नाना छिद्र घटोदर स्थित महा। घड़े की तरह है ये, जैसे घड़ा दृश्यत्वात् आत्मा न भवती, घड़ा दिखाई पड़ता है इसीलिए वो आत्मा नहीं होता। कोई भी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी घड़े को मैं हूं ये नहीं कहेगा, क्योंकि दृश्यत्व यह है तो कहेगा, लेकिन मैं हूं नहीं कहेगा वो। जैसे घड़ा जड़ है, जैसे घड़ा रूपादिवान है कंबग्रियमान, जैसे घड़ा सांसत्व है अंशांशी भाव वाला है। नैयायिक लोग परमाणु का संघात है ये मानते हैं, या घट कपाल संयोग ही घट है ऐसा मानते हैं, अंशांशी भाव मानते हैं, और भौतिक है। इन पांच हेतु के कारण घड़ा मैं नहीं हो सकता है, इसी तरह जो घड़े में पांच हेतु हैं वही पांच हेतु इस घड़े में है। कौन से घड़े में? देह घट में है, इसलिए यह आत्मा तो हो ही नहीं सकता। यदि यह आत्मा हो सकता है तो घड़ा भी आत्मा हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं घड़े को आत्मा होने में, लेकिन कोई भी नहीं कहता कि घड़ा आत्मा है, मैं हूं। दूसरी बात से खंडन करते हैं सुरेश्वराचार्य जी। मूर्छा सुप्ति मरणेष्वेपि देह प्रदृश्यते। मूर्छा में जो व्यक्ति मूर्छित होता है, सुसुप्ति में गहरी निद्रा में गया हुआ अवस्था में, और मरणेषु व्यावहारिक दृष्टि से मृत्यु के अवस्था में देह प्रदर्श्यते, देह तो दिखता रहता है, जैसा अभी दिख रहा वैसे उस समय भी दिखेगा, मूर्छा में भी शरीर जैसा का वैसा ही दिखेगा, सुसुप्ति में भी शरीर वैसा का वैसा ही दिखेगा, मरण पश्चात भी शरीर वैसा का वैसा ही दिखेगा। ये तीनों अवस्था निश्चेष्टा की अवस्था है, इतने जरूर आप अनुमान कर सकते हो कि मूर्छित अवस्था में व्यक्ति का इंद्रियों के साथ संबंध होता नहीं, सुसुप्ति अवस्था में भी व्यक्ति का इंद्रियों के साथ संबंध होता नहीं, शरीर चेष्टा नहीं करता, मरण पश्चात भी शरीर का चेष्टा नहीं है। इसके बावजूद भी आप ये कह सकते हैं कि मरण पश्चात तो श्वासोच्छ्वास नहीं करता, लेकिन मरने से पहले मूर्छा और सुसुप्ति में तो वह श्वासोच्छ्वास होता है, लेकिन श्वासोच्छ्वास होने पर भी मूर्छा वाला व्यक्ति बाहर के किसी पदार्थ को नहीं जानता,
गहरी निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति भी बाहर के किसी पदार्थ को नहीं जानता, मरा हुआ मुर्दा भी बाहर के किसी पदार्थ को नहीं जानता। लेकिन प्राण का संचार होता है, इतनी मात्रा से उसको आत्मा नहीं कह देना, इतनी मात्रा से उस शरीर को आत्मा नहीं कह सकते। प्राण का संचार होने मात्र से उसको आत्मा नहीं कहा जा सकता है। तुलसीदास जी ने तो बड़ा बहुत सुंदर युक्ति से कहा है, प्राण संचार मात्र से शरीर आत्मा होता तो जो है लोहार की जो धोकनी होती है ना, उसमें भी प्राण संचार होता है तो उसको भी मान लो आत्मा। प्राण संचार नहीं होता उसमें है? लोहार की जो धोकनी हवा करने वाला होता है ना, लो चमड़े की, क्या बोलते हैं उसको है? धमण, हाँ धमण, धमनी है। तुलसीदास जी ने तो कहा है, प्राण संचरण होने मात्र से ही आत्मा मानते हो तो वो भी तो आत्मा है। लेकिन कभी भी नहीं सुना है कि उसने मैं यहां हूं ऐसा कहता हुआ कभी नहीं सुना है।

0: நம டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர் ரேடியோ, தி சைஸ் ஆஃப் அவர் ஆடியோ கலெக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ டே பை டே. வி நவ் ஹோஸ்ட் மோர் தேன் 25,000 ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். இன் ஆர்டர் டு மேக் தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆக்சசபிள் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் ரேடியோ லிசனர்ஸ், வி ஹவ் ரீஆர்கனைஸ்ட் அவர் ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல். திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோசஸ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shiva Tattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaiva Lahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய். டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஹிந்தி ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் நாயன்மார் புராணம். தி டைட்டில் இஸ் கலிய நாயனார் புராணம், பிரசன்டட் பை ஸ்ரீ சிங்கப்பூர் சங்கர நாராயணன். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: ஓம் நம சிவாய். பக்தோ, அபி ஹம் ஏக் ஆர் தக்ஷிண பாரதிய சந்த் யா நாயன்மார் கி கஹானி சுனேங்கே. इनका नाम कलियर है। शिव के मंदिर में दीपक जलाने की सेवा को भक्तिभाव से करने वाले कलिय नायनार का जन्म तिरुवट्रियूर में कोल्हू चलाकर तेल निकालने वाले तेलियों के एक परिवार में हुआ था। यहाँ शिव का नाम त्यागेश्वर है, वे त्याग की मूर्ति माने जाते हैं। यह वही स्थल है जहां वचन भंग करने के कारण नवी शती में सुंदरर की नेत्र ज्योति छिन गई थी। इसी स्थल पर पिछली शताब्दी में तमिलनाडु के चिंतक संत रामलिंग स्वामी ने 12 वर्ष तक निरंतर साधना की थी। कुलिय नायनार के पास अपार धन संपदा थी, व्यापार में आय भी प्रचुर मात्रा में होती थी। इन्होंने शिव मंदिर के अंदर और बाहर दीप प्रज्वलित करने की सेवा का प्रण ले लिया। निष्ठापूर्वक उनकी सेवा पर्याप्त समय तक चलती रही। कालांतर में इनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आने लगा, व्यापार कम हो गया। इस पर कलिय नायनार अन्य व्यापारियों से क्रय ले करके तेल का विक्रय करने लगे। उससे मिलने वाली धनराशि का तेल खरीद कर दीप सेवा का कार्य चलाता रहा। परंतु शिव तो अपने भक्त के महत्व को सारे संसार को दिखाना चाहते थे। जब तेल विक्रय का काम भी न चला तो कोल्हू चलाने के काम को धन अर्जित करने के लिए अपनाया। कोल्हू में तेल निकालना, बीजों से निकले तेल की जांच करना, बैलों की सेवा करना उनका काम था। परंतु मजदूर अधिक थे, कोल्हू कम, अतः धीरे धीरे आय का यह मार्ग भी बंद हो गया। इतने पर भी जो कुछ मिला उससे वे शिव मंदिर के दीपक जलाने की अपनी सेवा करते रहे। जब आय के सभी साधन बंद हो गए तो उन्होंने अपनी सर्वगुण संपन्न पत्नी को बेचने का प्रयास किया, पर उसमें असफल रहे। सेवा में विघ्न न पड़ जाए यह विचार कर वे दीपकों में वर्तिका डालकर अपने रक्त को तेल के स्थान पर डालने का विचार कर अपना गला काटने को उद्युत हो गए। परंतु त्रिनेत्र त्रिभुवशारी प्रभु स्वयं उसी क्षण प्रकट हुए और अनंत कृपा करते हुए भक्त का हाथ रोक लिया। जब वृषभ आरूढ़ शिव समक्ष आए तो कलियर का घाव स्वतः ही ठीक हो गया, हाथ प्रभु को प्रणाम करने की मुद्रा में बंद गए। शिव ने आस्था के दृढ़ अपने भक्त को शिवलोक में स्थान प्रदान किया। त्रिवट्रियूर के वर्णन में चकिलर ने वहां के मणि मंडपों और सुंदर रंगमंच का वर्णन किया है, जहां शिव के स्तुति गीत गाए जाते थे और नर्तकियों अनेक उनके अनुरूप नृत्य करती थी। संगीत मंडप और प्रवचन मंडप भी मंदिर में थे। इसकी जानकारी पुराणकार ने शिलालेखों की से ग्रहण की है। कलियर नायनार असंख्य अगणित दीप प्रतिदिन जलाते थे और इसे वे दैनिक सेवा के रूप में करते थे। साधारण सेवा में परीक्षा की घड़ी संभवत न आती, पर जब यही दीप सेवा जीवन का लक्ष्य बन गया तो कलियर ने जीवन में भी अड़चन और परीक्षा का समय आया। तमिल प्रदेश में किसी भी कर्म को उच्च या निम्न नहीं माना जाता था। इसका प्रमाण है कि एक धनाढ़य व्यापारी द्वारा कठिन समय आने पर दूसरों के लिए कार्य करना या फिर कोल्हू चलाने जैसी साधारण मजदूरी का कार्य करना भी ठीक ही था। ऐसा कोई उल्लेख या संकेत नहीं मिलता कि किसी भी व्यक्ति ने उनका उपहास किया हो। चिक्किलर ने अति प्राचीन काल की इस कथा के माध्यम से अनन्य निष्ठा और अपने प्रण की रक्षा के लिए प्राण तक उत्सर्ग करने की तत्परता का वर्णन किया है। इसीलिए कलियर नयनार एक उच्च कोटि के संत या नायनमार हैं। ओम नमः शिवाय।
3: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
4: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம்.org, த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் சுவாமி ஸ்ரீ ஆத்மானந்தகிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய்.
5: आप तैयार हो अपने शरीर को 100% कुर्सी की तरह जड़ है मानने को तैयार है, जबकि आपका शरीर 100% कुर्सी की तरह ही जड़ है। चैतन्य के साथ तादात्म्य होने के कारण आप अपने आप को अपने शरीर को जड़ नहीं मान सकते, लेकिन कोई विचार करने वाला व्यक्ति, तत्व विचार करने वाला व्यक्ति, विवेक करने वाला व्यक्ति जड़ और चैतन्य क्या है, क्या जड़ है क्या चैतन्य है, ये विचार करने वाला व्यक्ति शरीर को कुर्सी की तरह 100% जड़ स्वीकार करेगा कि नहीं, बोलो। अब भी करते हो विचार करने के समय में, तो अब भी यही कहोगे चैतन्य मैं हूं और शरीर मेरा, तो शरीर तो जड़ है। ऐसे भ्रांति क्यों हुई भाई? तादात्म्य के चलते। कुर्सी के साथ आपका तादात्म्यता नहीं है, चैतन्य के तादात्म्यता नहीं है, इसीलिए कुर्सी को तो तुम 100% जड़ मानने को तैयार हो, लेकिन शरीर के साथ चैतन्य का ऐसा तादात्म्य बन गया है, अन्यस्मि अन्य धर्मा धर्मी तादात्म्य हो गया है। चैतन्य का धर्म शरीर में और शरीर का धर्म चैतन्य में अन्य अन्य आश्रय होने के कारण इस तरह भ्रांति हो सकती है। तो ये तो कोई समझदार व्यक्ति विचार करेगा तभी उसको दिखेगा कि जड़ता कितनी है और चेतनता कितनी है। पशुता भी है, हालांकि आप अपने आप को पशु मानने को तैयार नहीं हो, बोलो। आप लोग अपने आप को पशु मानने को तैयार हो, पशु मानने को तैयार हो, बोलो। पशु मानते हो कि इंसान मानते हो? लेकिन जब विचार करते हैं तुम अपने को भले इंसान मान लो, लेकिन जब तत्व विचार करते हैं तो तुम्हारे में इंसानियता कितनी है और पशुता कितनी है स्पष्ट दिखेगा। और शैव दर्शन में तो कहा गया है पाशवद्दो ही पशव, पाश से बंधे हुए होने के कारण जीव मात्र पशु है। पाश पंचविधा, आप पांच प्रकार के पाशों से बंधे हैं। और गीता में तो कह दिया है कर्मानुबंधी में मनुष्य लोग, इस संसार में हर मनुष्य उसके द्वारा किए गए कर्म से बांधा हुआ है। तो जो बांधा हुआ हो वो इंसान कैसे हो सकता है, बोलो? इंसान बांधा हुआ होता है? स्वतंत्र को इंसान कहेंगे, बंधे हुए को इंसान कहेंगे? बंधे हुए तो पशु कहेंगे। इसीलिए तुमने भगवान को पशुपति माना कि नहीं है? भगवान को पशुपति माना कि नहीं? वह पशुपति है तो पशु कौन है, बोलो? तुम खुद पशु हो कि नहीं, उसको तुमने पशुपति माना है तो तुम खुद पशु हो। तो विचार करने पर सिद्ध होता है कि मुझ में पशुता है, लेकिन विचार नहीं करें तो फिर हम पशु सिद्ध नहीं होते, हम तो अपने आप को इंसान बंधे हुए हैं फिर भी इंसान कहते जा रहे हैं। बंधे हुए हैं फिर भी क्या कह रहे, कहने के लिए अपने आप को इंसान कह रहे हैं और बंधे हुए हैं, इसलिए विचार करने पर अपने आप में पशुता सिद्ध हुआ कि नहीं बोलो। जड़ता पशुता कलंकिता, कलंकी माने जो शास्त्र ने करने से निषेध किया हुआ काम है वह तुम यदि करते हो तो निषिद्ध कर्म करने वालों को कलंकी बोलते हैं। समझ गया कि नहीं? शास्त्र ने कहा कि चोरी न करो, तुमने चोरी किया तो वो तुम्हारे मथे में कलंक लग गया कि नहीं है? शास्त्र ने कहा कि तुम अभक्षण भक्षण न करो और तुमने कर ली तो कलंक लगा कि नहीं? शास्त्र ने कहा कि ये कर्म न करो फिर भी तुमने कर ली तो यही तो तुम्हारी कलंकता है। और वास्तव में विचार करें तो तुमने इतनी गलत काम कर रखी है, तुम निर्दोष कैसे सिद्ध होगे? इतनी गलत काम कर रखी है कि तुम निर्दोष तो सिद्ध नहीं हो सकते हो, इसलिए कलंकिता कुटिलचरत तुम, करते कुछ हो, कहते कुछ हो, मन में कुछ और है, यही कुटिलता है। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मन्यन्यत, इसी का नाम है कुटिलता। मन में कुछ और है, वाणी से कुछ और बोल रहे हो और कर्म कुछ और कर रहे हो, इसी को कुटिलता बोलते हैं। यही दुरात्मा का लक्षण है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, मन में जो है वही वाणी में है और मन और वाणी में जो है वही व्यवहार में है, तो उसी को सरल व्यक्ति कहेंगे, उसी को सीधा व्यक्ति कहेंगे। और मन में कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ है, तो उसको क्या कहेंगे? टेढ़ा व्यक्ति कहेंगे कि नहीं? वो व्यक्ति बड़ा टेढ़ा है, करता कुछ है बोलता कुछ और है। व्यवहार में भी तो ये कहते हैं ना, उस टेढ़ेपने को ही कुटिलचारत्वम। जड़ता पशुता कलंकिता कुटिलचारत्वम च नास्ति मयि देव, यदि अस्ति राजमौले। राजमौले संबोधन है, राजाओं का भी महाराज सिरमौर राजमौले, राजमुकुट। अस्ति यदि राजमौले, हे राजमौले, ये संबोधन हो। यदि कदाचित मुझ में जड़ता भी उद हो, पशुता भी हो, कलंकिता भी हो, कुटिलचरता भी हो, तो भी

ऐसा जड़ तो मैं नहीं हूं, और ऐसे महान जड़ से जड़ वस्तु को भी आपने स्वीकार किया तो फिर केवल मेरा तिरस्कार क्यों करते हो? भगवान शिव ने माला किसकी बनाई? गुलाब की, कमल के? प्रार्थना क्या करते हो? सृगपि निर्करोति परिकर। महिमने स्तोत्र में पुष्पदंताचार्य जी ने क्या कहा? सृग माने माला, सृगपि कि कौन सी माला, सृगपि निर्करोति मनुष्यों की खोपड़ी, मरने के बाद मशान घाट में पड़ी हुई मनुष्यों की जो खोपड़ी है, उन खोपड़ी समूह को भगवान शिव ने माला पहन बनाकर पहनी कि नहीं? अरे अभी तो मैं जिंदा हूं, मरे हुए खोपड़ी को तो तुमने माला बनाकर पहन रखी है, स्वीकार किया है, धारण किया है, अपने आभूषण के रूप में स्वीकार किया है, तो मेरा तिरस्कार फिर क्यों करते हो महाराज? मान लो कि मैं जड़ हूं, फिर भी तो उस खोपड़ी जैसा जड़ तो नहीं हूं। हूं बोलो, तुम अपने आप को मरे हुए मनुष्यों की खोपड़ी जैसा जड़ मानने को तैयार हो? जबकि वो जड़ खोपड़ी तुम्हारे खोपड़ी में है कि नहीं, फिर भी अपने आप को चेतन मानते हो कि नहीं? तो ऐसे जड़ को शिव स्वीकार कर सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? क्यों तिरस्कार करते हैं? शंकराचार्य कहते हैं कि मुझे क्यों तिरस्कार किया? जड़ता। दूसरी बात है, त्रिशूल कैसा है शिव जी के हाथ में? तुम्हारे जैसा चेतना है उसमें? थोड़ा भी चेतनता है? बोलो। ये बात अलग है कि तुम शुद्ध चैतन्य नहीं हो, है ना? भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं ये बात अलग है कि मैं शुद्ध चैतन्य नहीं हूं, मैं जड़ मिश्रित चैतन्य हूं, है ना? लेकिन वो त्रिशूल तो शुद्ध जड़ है, वो खोपड़ी तो शुद्ध जड़ है। अब शुद्ध जड़ त्रिशूल को अपने हाथ का आभूषण बनाकर धारण कर ली ही, और शुद्ध जड़ खोपड़ी को जब अपने माला बनाकर गंठ में धारण कर ली, तो मुझमें तो उनकी अपेक्षा बहुत ज्यादा चैतन्य है। मुझे भी अपने शरीर में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कोई न कोई आभूषण के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करते हो महाराज? कहीं पहन लो ना महाराज, मुझे कहीं अपने आभूषणों के कहीं ना कहीं जोड़ लो ना महाराज। आप महिला हो तो नाक में नथनी के रूप में पहन लो, किसे? जब सोने के और हीरा के बिल्कुल जड़ नथनी को नाक में पहन सकते हो, तो उससे तो मैं बहुत ज्यादा चैतन्य हूं महाराज। मुझे कहीं ना कहीं पहन लो, एक कान में लटका लो, हाथ में कहीं अंगूठी बनाकर पहन लो, मैं अपने को कृतार्थ मानूंगा कि शिव ने मुझे स्वीकार किया है। ये परमात्मा कहीं ना कहीं आभूषण के रूप में स्वीकार करो भाई, सर्वथा तिरस्कार तो मत करो। जड़ता पशुता, दूसरी बात है पशु, ये बात अलग है कि मैं बंधन में हूं, मैं बंधा हुआ हूं। आशा पास जगद्दास, महाभारत में श्लोक आता है, आशा पास जगद्दास। आशा रूपी पास से जो बंधा हुआ होता है वह जगत का दास होकर जीता है, और निराशी वो आशा रूपी पास में जो बंधा नहीं है वो निराशी है, आशा रहित है, अवनीपति, वो सम्राट हो जाता है। जिस दिन तुमने आशा छोड़ दी उस दिन तुम सम्राट हो जाओगे। आशा दास।

0: जगद्दास निरासी अवनी पति। और दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में से एक गुरु का वाक्य है ये, आसाई परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। ये वाक्य किसका है? दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में से एक गुरु का वाक्य है, हैं? तुमको ज्ञान चाहिए तो वेश्या से भी मिल सकता है महाराज, तुम उसके योग्य तो बनो कम से कम। दत्तात्रेय तद योग्य थे, उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर ली। आशा दास जगद्दास निराशी अवनी पति, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। हम सब पशु इसलिए हैं क्योंकि हम आशा के बंधन से बंधे हुए हैं, निराशी नहीं है। लेकिन मैं उस वृषभ जैसा पशु तो नहीं हूं। भगवान शिव का वाहन क्या है? वृषभ है, नंदी है। अरे मैं तो दो टांग वाला इंसान हूं, वो तो चार टांग वाला तिर्यक प्राणी है। मैं तिर्यक तो नहीं हूं, कम से कम नंदी तिर्यक प्राणी है। भगवान शिव ने दो पशुओं को धारण किया है, एक तो वाहन के रूप में नंदी को धारण किया है, अपनाया है, दूसरा मृगधारम, दो उंगलियों के बीच में एक मृग को धारण किया है। मृग चंचल मन का प्रतीक है, प्राणियों में सबसे ज्यादा चंचल प्राणी मृग है। और ये सिंबॉलिक है, मन अति चंचल है। और भगवान शिव ने ये दो उंगलियों के बीच में उस मृग को धारण किया है। दक्षिणामूर्ति भगवान शिव का चार भुजा देख लो, एक हाथ में मृग है। मृग दंतिक त्वाकृत सुंदराम मृगधरम, मृगधरम भी आता है ना। अरे भाई वो मृग जैसा पशु तो नहीं ना हूं मैं, नंदी जैसा पशु तो मैं नहीं हूं। ये बात अलग है कि मैं पूर्ण इंसान नहीं हूं, पशुता है, पांच प्रकार के पासुओं से मैं बंधा हूं। अब पशु ही सही, फिर भी जब आप नंदी को वाहन के रूप में स्वीकार कर सकते हो, मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते हो महाराज? मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं, शिव हे चंद्रमौले, मुझे वैकल्पिक वाहन के रूप में रिजर्व में स्वीकार करो। शब्दार्थ समझ गए ना, वैकल्पिक वाहन, अल्टरनेट। अरे कदाचित वह नंदी जिस पर आप हमेशा सवारी करते हो कोई दिन बीमार हो गया तो मैं काम में आऊंगा, स्वीकार कर लो महाराज, मेरी सवारी कर लेना है? मुझे उतने लायक तो समझकर स्वीकार करो महाराज, मेरा सर्वथा तिरस्कार मत करो। जड़ता पशुता कलंकिता, तीसरी बात है कलंकी। हालांकि मुझमें वो कलंक नहीं है मेरे दृष्टि से, लेकिन आपके दृष्टि से जब आप देखते हैं कि मैं कलंकी हूं, फिर भी तिरस्कार करने योग्य तो नहीं हूं। चंद्रमा जैसा गुरुपत्नी गामी कलंकी को तो अपने सिर में धारण किया है, मैं ऐसा गुरुपत्नी गामी तो नहीं ना हूं, है? बोलो, इतना तो आप गारंटी कहोगे कि नहीं, छाती में हाथ रखकर है? कहोगे कि नहीं मैं गुरुपत्नी गामी हूं? आप गुरुपत्नी गामी हैं? बोलो, चंद्रमा गुरुपत्नी गामी है कि नहीं? बोलो, प्रमाण है कि नहीं? और ऐसे कलंकी को जो देवताओं ने भी जिसकी निंदा की, शास्त्र ने निंदा की, और जिसके चलते बृहस्पति ने उसको राजयक्ष्म रोग से ग्रसित कर दिया, क्षय रोग से ग्रसित कर दिया। क्षय रोग राजयक्ष्म टीवी, चंद्रमा को टीवी हो गया है। जा, आज के बाद तू क्षय रोग से ग्रसित हो जाता है। तो परिणाम क्या हुआ है? पूर्णिमा में इतना सुंदर दिखने वाला चंद्रमा प्रतिपदा से घटना शुरू होता है कि नहीं, बोलो? पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से घटना शुरू होता है कि नहीं? अब अमावस्या आते आते तो खत्म। फिर जिस जैसे एक तैसे वह बेचारा प्राण लेकर अमावस्या के प्रतिपदा से थोड़ा बढ़ने शुरू करता है, पातंजल का च्यवनप्राश खाना शुरू किया होगा, अमृत पाक खाना शुरू किया होगा, स्विच ऑफ करो ना मां। तो जैसे तैसे बढ़ता है तो फिर पूर्णिमा तक तो कुछ तंदुरुस्त होता है, ठीक ठाक होता है, तो फिर रोग लग जाता है, फिर क्षय होने लगता है। क्यों महाराज? उसको तो श्राप लगा है ना। श्राप क्यों दिया? कलंकी। जिसको श्रद्धा से गुरु पत्नी मां की तरह पूजना चाहिए और उसी को उसने पत्नी की तरह भोगने शुरू किया, और ऐसे कलंकी को आपने मस्तक में धारण किया है, तो महाराज ऐसा चंद्रमा जैसा कलंकी तो मैं नहीं हूं। उसको मस्तक में धारण किया है तो मुझे कई चरणों में तो आश्रय दो, बोलो? शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? ऐसे कलंकी को आप मस्तक में सिरमौर बनाकर धारण कर सकते हो तो मुझे कहीं चरण की जूती तो बना लो महाराज। जड़ता पशुता कलंकिता कुटिल चरत्वम टेढ़ा चलना, मन में कुछ, वाणी में कुछ, कर्म में कुछ और, व्यवहार में इस प्रकार का भिन्नता लाना, यही जीवन की कुटिल चरता है, टेढ़ा चाल है, यही टेढ़ी चाल है आपकी। इस हिसाब से आप सर्प हैं कि नहीं, बोलो? हैं? सर्प सीधा चलता है कभी? सर्प हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलता है। सर्प की चाल कुटिल है और आपके जीवन का चाल भी सर्प के सरा है कि नहीं, सर्प की तरह ही है ना। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। पति कहता है कि सत्संग में मत जाना, और तुम सत्संग में गए बिना नहीं रह पाते हो, तो सत्संग में आ गए। पति ने पूछा कहां गई थी? बोले सब्जी लेने गई थी। कुटिल चर हो गया कि नहीं, सर्प हो गया कि नहीं, तुम बोलो, बोलो ना। है? ये तुम्हारी कुटिल चरता है कि नहीं, सर्प है कि नहीं? जीवन में कई बार ऐसा होता है भाई, करना ही पड़ता है, और आप लोग कुटिल चर करते ही हो, आप सर्प ही हो। पति से घर खर्चा के लिए पैसा लेते हो और सभी पैसा घर खर्चा में न लगाकर उसमें से कुछ बचाकर साधु ब्राह्मण को देते हो, कुटिल चर है कि नहीं, बोलो? ये तुम्हारी सर्पपना है कि नहीं? पति कहा कि इतना, इतने रुपया तुमने पहले लिया था, उसका हिसाब कहां गया? तो तुम कहोगे अरे भाई इतनी महंगी सब्जी है, इतने महंगा तेल है, इतनी महंगे दूध है, ये घर चलाना होता है इतने पैसे से क्या होता है? फिर भी ये कहो कि मैं कैसे घर चला रही हूं, उसमें तुम ये कहोगे दूध महंगा है, सब्जी महंगी है, ये सब कहते हुए साधु संतों को भी देना जरूरी है, कहोगे? बोलो, उस वाक्य को तो तुम छुपाए रखोगे उसको, जबकि देती जरूर हो। तुम कहती नहीं हो ना, यही तो कुटिल चरता है। क्या ये ईमानदारी है, सीधी चरण है तुम्हारा? मनुष्यन्यत बचस्यन्यत कर्मण्यन्यत, यही कुटिल चरता। फिर भी महाराज मैं उस जहर से भरे हुए सर्प की तरह था नहीं। ये बात अलग है कि मेरे में अमृत नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज सर्प जैसा जहर भरा हुआ तो नहीं हूं। ये बात अलग है कि मेरा जीवन सीधा नहीं है, सरल नहीं है, व्यवहार में कई बार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, फिर भी सर्प जैसा तो नहीं हूं। और ऐसे सर्प को भी अपने जब धारण कर लिए है, सिर में जटा बांधने के लिए उसका प्रयोग किया, गले में माला बना के पहन ली, हाथ में बाजूबंद के रूप में रख ली, कमर में दंती तक बाघ के चमड़ी को, हाथी के चमड़े को बांधने के लिए बेल्ट के रूप में प्रयोग कर ली, उस सर्प का तो अपने जीवन ही कृतार्थ कर दिया महाराज, लेकिन आज तक मुझे क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो महाराज? कहीं ना कहीं कुछ तो प्रयोग करो मुझे।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: ऋचम् वाचम् प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये शामि प्राणम् प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रम् प्रपद्ये वागो यः शौजो मयि प्राणापानो जन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातित्रिणम् बृहस्पतिरमे दधातु शन्नो भवतु भुवनशयस्पतिः शन्नो भवतु भुवनशयस्पतिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामे देवाः भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो बृधश्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधा शांतिहि शांतिहि शांतिहि। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की, प्रेम पुरी जी महाराज की। आइए, विचार चल रहा है शिव महिमन के दूसरे श्लोक पर। पहले उच्चारण कर लें। अतीत पंथानम तव च महिमावां मनसयो अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधक्ते श्रुतिरपि शक।

0: तीने पतति नमन कश्य नवच।
1: पुष्पदंताचार्य जी भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए यहाँ पर बतला रहे हैं। इस प्रकृत श्लोक में निर्गुण निराकार सगुण साकार दोनों ही स्वरूपों का संक्षेपतः चर्चा किया है। वांग मनसयो तव महिमा अतीतः, इसका तात्पर्य है कि भगवान का जो स्वरूप है महिमा है, मन वाणी से अतीत है। मतलब कि निर्गुण निराकार स्वरूप का प्रतिपादन जब मन वाणी से परे है तो उसका व्याख्यान कैसे हो सकता है, क्योंकि व्याख्यान का साधन हमारे पास मन है और वाणी है। मन वाणी उसी चीज में प्रवृत्त होते हैं जिसमें गुण हो, क्रिया हो या द्रव्य हो, जाति हो, आकृति। सत्यता अवच्छेदक जहां पर होता है वहीं पर शब्द की प्रवृत्ति होती है, और सत्यता अवच्छेदक किसी न किसी गुण, क्रिया, जाति या संबंध से हुआ करती है। पर जो परमात्मा का स्वरूप है वह निर्गुण है, निष्क्रिय है, इस कारण से सत्यता अवच्छेदक की प्रवृत्ति न होने से मन वाणी का विषय नहीं। फिर आखिर इसको कैसे समझे, तो कहते हैं कि भगवती श्रुति डरती डरती कहती है अतद व्यावृत्या यम चकित्म विदत्ते श्रुतिरपि। अतद व्यावृत्ति का तात्पर्य नेति नेति, यह भी नहीं यह भी नहीं। यहाँ जो दो नेति शब्द है उसमें से प्रथम नेति शब्द का अर्थ है व्याकृत प्रपंच का निषेध किया है, और द्वितीय नेति शब्द के द्वारा अव्याकृत। यह पूरा प्रपंच व्याकृत अव्याकृत दो भेदों से भिन्न है। तो निषेधावधिक जो अधिष्ठान है वही परब्रह्म परमात्मा है। इस प्रकार से श्रुति भी चकित होकर के उस स्वरूप का प्रतिपादन करती है, परंतु ये बात अनुभव में नहीं उतर रही कि जो मन वाणी का विषय नहीं है उसको निषेध मुख से शास्त्र प्रतिपादन करता है। परमात्मा को समझने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो विधि मुख या निषेध मुख। मुख का प्राधान्य भी होता है, मुख का दरवाजा भी होता है, दोनों अर्थ होता है। तो आप चाहे विधि मुख से समझे या निषेध मुख से, तो निषेध मुख से श्रुति भयभीत होकर वर्णन करती है। जिस प्रकार से आप हरिद्वार की यात्रा पर निकलते हो और आप अपने पत्नी से कहें जरा अपने संदूक को खाली रखना, हमें भी दो कपड़ा रखना है। पत्नी ने कहा कि संदूक में जगह नहीं, कपड़ा रखना संभव नहीं, पर आप कहते हैं कि जरा कुछ सा अपना सामान करके और दो मेरे कपड़े के लिए जगह बना दो। जब आप आग्रह करते हैं तो पत्नी आपके सामने संदूक खोल करके दो साड़ी को बाहर निकाल दिया और कह दिया कि जगह बन गई। जगह शब्द का अर्थ है आकाश, जो खाली पनाई स्पेस उसी को आकाश कहते हैं, और आकाश की परिभाषा है जो सर्वव्यापक, जो सबको जगह दे उसका नाम है आकाश। तो आकाश जो सर्वव्यापक है उस सर्वव्यापक आकाश के लिए आप कहते हैं कि जगह बना दो, मतलब आकाश बना दो, और दो साड़ी निकाल दिया तो जगह बन गया, आकाश उपलब्ध हो गया। तो जिस प्रकार से आप संदूक से जब कपड़े निकाल देंगे तो केवल आकाश ही आकाश है, आकाश के अंदर ही सारे कपड़े थे, जैसे निकाला वैसे जगह बन गया। वैसे नाम रूपात्मक यह जो आवरण है इसी को ईशावास में कहा गया है कि ईशावास मिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तिन भुंजीथा मा गृध कससित धनम। यहाँ तेन त्यक्तेन का व्याख्याकारों ने अर्थ किया है कि नाम रूप का त्याग करते थे। तो जिस प्रकार से पत्नी ने आपके कपड़े को रखने के लिए दो साड़ी निकाल दिया, जगह बन गई, ऐसे ही उस ब्रह्म में जो नाम रूपात्मक की चादर है, इसको आप निकालेंगे तो चैतन्य चैतन्य ब्रह्मी ब्रह्म है। ये तो नाम रूप का आवरण होने से हमें सर्वव्यापक परमात्मा की अनुभूति नहीं हो रही है। तो यहाँ पर वह जो व्यापक परमात्मा है उसमें ही नाम रूप परिकल्पित है और उसी के कल्पना से सारा व्यवहार चल रहा है। एक मेवा अद्वितीय आत्मा है। जिस प्रकार से एक कोई कारीगर सूत लेता है, सूत को लेकर के तरह तरह के कपड़े को रूप दे देता है। अब आप उसको सूत नहीं कहते हैं, कहते हैं कि ये साड़ी है, ये कमीज है, ये ब्लाउज है, ये शर्ट है, पैंट है। उसके नाम बदल गए, रूप बदल गए, आकृतियां बदल गई, पर वास्तव में उन कपड़ों से सूत को अलग कर दिया जाए तो कपड़ा की कुछ भी सत्ता नहीं होती। सारे वस्त्र सूत के ऊपर आरोपित है, अनष्ट होने के बाद भी सूत रूप हो जाएंगे। इसी प्रकार से नाम रूपात्मक प्रपंच उस परमात्मा में कल्पित है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचारे तो भी ये बात सिद्ध होती है। जो आप कहते हैं कि मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, इन सारे व्यवहारों में क्रियाएं अलग अलग हैं। चलना क्रिया अलग है, बोलना क्रिया अलग है। क्रियाओं के भिन्नता होने पर भी मैं की अनुगति सभी जगह है। मैं के द्वारा ही चलना हो रहा है। मैं तत्व को क्रिया करने के लिए, चलने के लिए पैर उपाधि है, लेन देन करने के लिए हाथ की उपाधि है। उपाधि मतलब यंत्र समझना अपनी मोटी भाषा में। बोलने के लिए मुख है, सुनने के लिए कान है, सूंघने के लिए नाक है। ये सारी उपाधियां हैं, यंत्र हैं। उसी यंत्रों के द्वारा एक ही मैं तत्व सारा क्रियाकलाप को संपादित कर रहा है। यदि मैं तरह से अलग हो जाए तो सारे यंत्र बेकार हो जाते हैं। जिस प्रकार से व्यवहारिक जगत में एक ही मैं तत्व के ऊपर ये सारे यंत्र और यंत्रों की आकृतियां और इनके व्यवहार तीनों ही आरोपित हैं। सबके आंख भी अलग अलग है, सबके कान का आकार भी अलग है। किसी की आंख मटर की तरह है तो किसी की कमल की तरह। सबकी आंख एक जैसी नहीं, पर आंख के आकृतियों के अलग होने से दृश्य अलग अलग दिखाई नहीं पड़ता है। चाहे जैसे भी आंख हो, सभी आंखों से रूप दिखाई पड़ता है और रूप देखने वाला एक साक्षी है जिसको आप मैं कहते हैं। मैं का शोधित अर्थ है चैतन्य साक्षी और मैं का अशोधित अर्थ है वाच्यार्थ है साढ़े तीन हाथ का शरीर जिसको हम देहाध्यास भी कहते हैं। तो जिस प्रकार से एक ही मैं के ऊपर ये तमाम उपाधियां कल्पित हैं, उपाधियों के आकार प्रकार, उससे होने वाले व्यवहार और व्यवहार से फल भी अलग अलग है। जैसे मैं के लिए आंख है, आंख का कार्य देखना, देखने का फल है सुख दुख। यदि आपके अनुकूल रूप है तब तो आप सुखी होंगे, आह्लादित होंगे, बड़ा सुंदर सौंदर्य रूप है। यदि आपके प्रतिकूल है तो आप नफरत करेंगे, उससे दुख होगा। तो जिस प्रकार से एक मैं के लिए सारी उपाधियां हैं, सारे आकार प्रकार हैं और क्रियाएं हैं, इसी प्रकार से उस परब्रह्म परमात्मा के ऊपर ही ये पूरा संसार परिकल्पित है। यदि हम उपाधियों को हटा दें तो केवल मैं तत्व बचता है। और जब तक ये उपाधियां हैं, उपाधियों के क्रियाकलाप हैं, तब तक मनुष्य संसार में दुखी सुखी होता रहता है। जैसे या उपाधियों को हटा करके अपने आप में अपने स्वरूप में आप अंतर्मुख हो जाते हैं तो सारे सुख दुख समाप्त हो जाते हैं। ये आए दिन की अनुभूति है, सबके जीवन की अनुभूति है। जब हम रात्रि को सोते हैं, सोने के बाद उस समय सारी उपाधियां समाप्त हो जाती हैं। न उपाधियां होती हैं, न उपाधियों का व्यवहार होता है। यहां तक कि उपाधियों का जो सामान्य कारण मन है, वह मन भी अपने कारण अविद्या में विलीन हो जाता है। और ये जो सीमित अहंता है मैं, इस सीमित अहंता भी समष्टि अहंकार में विलीन हो जाता है। इसके विलीन होते ही हम परम आनंद को उपलब्ध होते हैं और इस सबके जीवन की अनुभूति है। आप जगने के बाद कहते हैं सुखम अहम अपस्वाप्सम नाहम किंचित अवेदिशम, मैं सुख पूर्वक सोया कुछ भी नहीं जाना। यह जो अनुभूति है सुखानुभूति, यह आत्म स्वरूप का है, क्योंकि वहां पर कोई भी विषय नहीं है। संसार में जो वैशेषिक सुख है इसमें विषय का संबंध है और विषय के संबंध से मालिन्यता आता है, फिर सुख दुख होते हैं। परंतु जो सुषुप्ति जन्य जो सुख है उसमें कोई विषय नहीं, निर्विषयक होने के नाते वहां आप परम आनंद को उपलब्ध होते हैं। जगने के बाद पुनः जैसी मैं की स्फुरणा होती है कि अयम अहमस्मि, सुषुप्ति में मैं विगलित हो जाता है, मैं बिल्कुल विलीन हो जाता है। जो जागृत अवस्था में आप कहते हैं कि अयम अहम अस्मि, अयम मतलब ये 3.5 हाथ का जो शरीर है, मैं ब्राह्मण हूँ, सेठ हूँ, महात्मा हूँ, इस प्रकार का जो परिच्छिन्न अहंकार है, इसके स्फुरित होते ही सारे यंत्र अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आप सुखी दुखी होते हैं, दिन भर काम करते करते रात्रि को आप थक जाते हैं। आपके अंदर ऐसा सामर्थ्य नहीं कि आप बिना सोए 10-20 दिन काम करते रहें। दुनिया कोई भी ऐसा प्राणी समर्थ नहीं है जो बिना सोए ही सारा काम करता रहे। जैसे आप 4-8 घंटा काम करते वैसे ही इंद्रियां थक जाती है, मन भी थक जाता है, और आप सुषुप्ति के लिए दौड़ते हैं। उपनिषद में दृष्टांत दिया है, जैसे आकाश में पक्षी कोई उड़ती है, उड़ने के बाद जब थक जाती है तो थकने के लिए अपने घोंसले की तरफ दौड़ती है। ऐसे ये जीवात्मा जब उपाधियों के द्वारा सांसारिक विषय का सेवन करता है, सेवन करने के बाद जब थक जाता है तो थकने के बाद सो जाता है, सोने के बाद अपने आत्मा के साथ अर्थात सीमित अहंता समष्टि अहंकार के साथ अभिन्न हो जाती है। इसी बात को परिषद में कहते हैं यो वै भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखमस्ति, जो भूमा जो समष्टि अहंता है जिसको ब्रह्मास्मि भी कहते हैं उसी में सुख है। अल्पे का अर्थ होता है जो परिच्छिन्न अहंकार है कि यह मैं हूं, इसमें सुख नहीं है। यदि इसमें सुख होता तो इंसान आए दिन सुषुप्ति की तरफ दौड़ नहीं लगाता। जब आप संसार के सारे विषयों का सेवन कर